नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागड़ रेडियो पर, क्योंकि यहां आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा मीठा शहद था उसका, परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके, और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है, इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: उसमें ऐसी एंटीबायोटिक वगैरह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा होती है तो उसको पिलाना पूरा पूरा बछड़ी का उसका अधिकार होता है और उसको बछड़ी को पिलाना चाहिए। उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो सामान्य दूध के मुकाबले में बहुत ज्यादा, लगभग 14.5% तक प्रोटीन होता है। उसमें मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। वो पूरी तरह से एक उच्च पोषण युक्त जो उसका आहार है बछड़ी के लिए तो वो होता है। हम कई बार क्या है, ये अच्छी तरह से पूरा से उसको दूध को पैर रखते नहीं है तो उसको दूध पे है, उसमें शुरू में 2 घंटे का बछड़ा हुआ तो उसके बाद से उसको दूध पिलाना शुरू हो जाता है
1: जी हाँ।
0: और उसको दूध के बार बार उसको 5-5 घंटे में उसको दूध पिलाते रहना चाहिए ताकि उसका उसको बिल्कुल भी ये भूख का एहसास ना हो बछड़े को। और क्योंकि वो दूध जो है वो ही उसके लिए पोषण का एक बहुत बड़ा जो उसका
1: स्रोत है जी बिल्कुल,
0: तो उसको अगर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो उसमें काफी सारे जैसे ऐसे एंटीबायोटिक भी होते हैं कि जो आगे भविष्य में गाय को, अगर जो बछड़ा गाय बनेगा और उसको बीमारी से लड़ने की ताकत भी उस दूध में होती है तो अगर वो दूध मिल जाता है तो हम शुरू में उसको एंटीबायोटिक दे दिया ये समझो
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो सबसे पहली आवश्यकता होती है, हालांकि हमारे से पशुपालक समझते भी इसको
1: जी हाँ।
0: लेकिन वो क्या है कि अपने खुद के खाने के लिए, क्योंकि वो उसमें लालच आता है कि साहब ये इसमें काफी अच्छा फायदा वाली ये चीज है, प्रोटीन ज्यादा है तो हमारे घर के लिए खाने के लिए रख लेते हैं
1: हाँ।
0: लेकिन उसमें पहला अधिकार बछड़े का है और हमें तो क्या, तो हमारा पहला ही उद्देश्य है कि हम नई गाय खरीदने के बजाय हम अपनी जो बछड़ी है उसको उच्च पोषण युक्त देकर अच्छी दुधारू बनाएं
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें उसका आहार में उसको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए
1: जी बिल्कुल। सर आपने बहुत सही कहा। तो हम जिस तरीके से माताओं को लेकर कहते हैं कि उनका जो पहला दूध आता है वो बच्चों को देना जरूरी होता है, उसी तरीके से पशु जो होते हैं उनका जो भी जो पहला दूध होता है वो उनके बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। हम ये सोच लेते हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व है और इसका हम बहुत अच्छे से राबड़ी बनाकर खा सकते हैं उसे उबाल कर, तो ऐसा हमें नहीं करना है। माँ का जो दूध है गाय का वो सबसे पहले उसके बछड़े को ही हमें देना है ताकि उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व उसे चाहिए वो मिल पाए।
0: बिल्कुल। और ये अपन मानते हैं कि जब बछड़ा 5 दिन तक तो हमने शुरू में दिया ही है उसका पूरा, और उसके बाद में भी जो 100 दिन तक हम ये मान के चलते हैं कि जो लगभग उसको उसमें यूं समझो कि इसको 110 लीटर तक का उसका दूध उसको पिल जाना चाहिए, और अगर 7 से 10 वीक तक का जो सप्ताह का जो बछड़ा होता है उसको 160 लीटर दूध, ये एक मात्रा है कि लगभग इतना तो दूध उसको बच्चे को मिल ही जाना चाहिए। तो इतना जब अपना दूध उसका भी एक ये वजन भी एक जब जो बछड़ा है वो 30 किलो का है तो उसको उसके जो शरीर का वजन है उसके मुकाबले में 10 गुना कम, यानी कि जैसे 30 किलो है तो 3 किलो पर डे प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जबकि अगर वो 60 किलो का उसका वजन हो गया बछड़े का तो एक मोटा अनुमान है तो उसको उसका 20 टाइम से यानी कि उसको 2 किलो, जब ज्यादा वजन हो गया तो उसमें दूध की मात्रा कम होगी, और जब कम वजन है 30 किलो का जब शुरू में जो कम अवस्था पे है तो उसको मतलब इसका 10% उसका दूध मिलना चाहिए, ये एक मोटा मोटा अनुमान है। जब हम क्योंकि हम जब भी अपना बछड़ा होता है बछड़ी होती है तो उसको अपने जो वेटनरी डॉक्टर है उसके देखरेख में तो रखना ही चाहिए, कहीं पर बीमारी से ग्रसित ना हो, उसको अच्छे स्थान पे रखना है, ये सारी चीजें जो हैं। अभी जैसे बरसात के दिन है तो अगर हमारे जो कोड़ कहते हैं या जिसको जो रखने की जगह है अगर उसको गीले जगह पे रखेंगे तो उसको कई सारी बीमारियां होती है। छोटा बच्चे को जिस तरह से हम घर में भी अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं तो बच्चों को ज्यादा हवा, ज्यादा बरसात, ज्यादा गर्मी, इससे हम बचा के रखना चाहते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे ही अगर आप जो बछड़ियां हैं तो उसको भी अभी जो बरसात के दिन है तो ऐसा नहीं कि थोड़ी लापरवाही करके उसको बरसात में भीगने के लिए छोड़ दे, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको जो गर्मी है आवश्यक गर्मी है उसको बनाए रखनी पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं ठंड, क्योंकि वो तो हम तो बच्चा तो फिर भी रो के बोल देता है
1: जी जी।
0: लेकिन जो बछड़े बछड़ी है जो गाय के हैं वो बोल नहीं पाते और कई बार हम समझ भी नहीं पाते उन चीजों को, तो उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि अच्छा जो उन्नत पोषण होगा तो उससे उन्नत गाय बनेगी
1: जी।
0: तो ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारा हमारे पोषण का उसको कार्य करना चाहिए। तो अभी इसी तरह से कई चीजें ऐसी हैं कि उसमें जो पौष्टिक तत्व है वो ज्यादा होता है। 10 दिन के बाद में क्या करते हैं कि दूध प्रतिस्थापन होता है, वो जो उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स उसमें ज्यादा होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, तो वो जो गाय के दूध के साथ साथ उसको ये दूध प्रतिस्थापन ये भी देना आवश्यक हो जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: और उसके 3 महीने के बाद में दूध के साथ साथ उसको काफ स्टार्टर एक होता है तो वो भी शुरू कर देना चाहिए। कई बार देखते हैं कि भाई जब बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको सूखा चारा देना शुरू हो जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन सूखा चारा क्या होता है कि उसको पचाने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है तो वो पच नहीं पाता, और हम समझते हैं कि उसमें अच्छे से उसको चारा दे रहे हैं, लेकिन उसको दूध का

0: की मात्रा जरूरी है, और सूखे चारे की जगह ये काफ स्टार्टर है, क्योंकि काफ स्टार्टर के अंदर क्या है कि काफी मात्रा में प्रोटीन होता है और उसके अंदर जो सुपाच्य प्रोटीन जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है
1: जी जी।
0: और इसी तरह से मिनरल, और वो एक अच्छा संपूर्ण आहार है, उसका लगभग 75% तक वो जो बछड़ा है तो वो उसको पाचन कर लेता है। तो उसको केवल सूखे चारे पे नहीं करके उसको हरा चारा दें और उसको काफ स्टार्टर पे भी रखें, तो उसमें क्या है बछड़े का वजन है वो तेजी से बढ़ना शुरू होगा, और उसमें जैसे जैसे उसमें वजन भी बढ़ेगा तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये खाली दूध तक शुरू में रखना है, बाद में हम उसको दुग्ध प्रतिस्थापक है वो देना है, उसके बाद में काफ स्टार्टर देना है, और जब थोड़ा सा 90 दिन के बाद में जब बछड़ा बड़ा हो जाए तब हमें धीरे धीरे इसको हरे चारे से लेकर सूखे चारे और फिर जो हमारा जो पशु आहार है नियमित पशु आहार है वो देने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जब अगर हम शुरू में बछड़े को संभाल लेते हैं और अच्छा पोषण देते हैं तो उसमें जो क्योंकि जो उसके गाय के मुकाबले में जो उसकी माँ है उसके मुकाबले में उसके दूध की क्षमता विकसित हो जाती है
1: जी जी।
0: और अगर अच्छा पोषण दिया गया तो उससे भी अच्छे ज्यादा दुग्ध के देने की क्षमता हो जाती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से अच्छे पोषण से हम बछड़े का विकास करके हम नई गाय खरीदने की जगह हम जो हमारी घर की जो बछड़ी है उसको अच्छे से हम उसको देखभाल करके पोषण से उसको अच्छे दुधारू के रूप में विकसित कर सकते हैं
1: जी बिल्कुल। सर आपने बहुत सही कहा, तो हम हमारे किसान भाई बहनों से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो किसी और गाय को खरीदने की उम्मीद लगा रहे हैं तो उनके घर में भी जो गाय है तो उसी के बछड़े का वो पोषण बहुत अच्छे से करें, साथ ही उसके रहने की जो जगह है वो सुव्यवस्थित करें ताकि वो बीमारियों से दूर रहे, और भरपूर मात्रा में अगर उसे पोषण तत्व मिलेंगे तो उसका जो दूध उत्पादन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा और हमारे किसान भाई बहनों को अन्य गाय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी से अवगत करवाया,
0: धन्यवाद।
2: सेम की जागृति बुन अवड़े आपड़े वेस में रोकड़िया जी सर जुड़े तक हता ने एणे आपणे घणी असल तरीका तकी वतार दीदू है कि आपड़े अगर नवी गाय लेवा जई रहा ने आपड़े एम सोची रहा कि एनू उत्पादन आपणे ने वधारे मिलेगा तो आपड़े घर में जे गाय रे एणनु अगर पोषण वधावी दंगा तो आपणे एणन तकी भी उत्पादन असल तरीका तकी मिली शकेगा।
1: हो अंजलि बुन जिम के आज ना कार्यक्रम में अपने वाते तो घना कनी करी ने अवे टेम थी गये है सूटा पड़वानू तो टेम न मान रखते थे कि पड़ा सूटा पर जाते जाते हम ले एक और कितने मोरे पड़ा सूटा
2: हो पे।

0: अंजलि बोन गीत तो आयशु पुरुण अणस गीत हाथे पड़ो सूट आशा करें कि आज जे भी बातें करी कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपड़े किसान भाई बोन ने गमी होंगा तो किसान भाई बोन आपने अमारो आज नो कार्यक्रम केवु लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली शको आपड़े अणा पता माते
1: तो किसान भाई बोन लखी लो अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिन कोड नंबर है 3270001 अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234
0: तो किसान भाई बन फेरी मलंगा अणास कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तारुदी
1: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कुपोषण को लेकर, और यह जो विषय है वो हमारे बच्चों के वर्तमान ही नहीं बल्कि उनके पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। बच्चे हमारे परिवार और समाज की सबसे अनमोल धरोहर हैं। उनका स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और खुशहाल बचपन हर माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी, समय पर सही भोजन न मिलना, बार बार बीमार होना या बच्चों के विकास पर ध्यान न देना जैसी वजहों से बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। कई माता पिता ये समझ नहीं पाते कि बच्चा कमजोर क्यों होता जा रहा है, उसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, वह बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है या उसकी लंबाई और विकास उम्र के अनुसार क्यों नहीं हो रहा। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कुपोषण क्या है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, किन बच्चों को इसका खतरा ज्यादा होता है और माता पिता अपने बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं। बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कुपोषण क्या है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, किन बच्चों को इसका खतरा ज्यादा होता है और साथ ही माता पिता अपने बच्चों को कुपोषण से कैसे बचा सकते हैं। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है राधा जी, जो कि महिला पर्यवेक्षक हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह मनाते हैं, तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि कुपोषण क्या है और इसकी पहचान हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि कुपोषण क्या होता है और ये बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, पोषण माह के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि कुपोषण क्या है, कुपोषण का सीधा सा अर्थ होता है कि जरूरत के अनुसार बच्चे के पोषक जो तत्व हैं उनका न होना, यानी कि जैसे प्रोटीन है, विटामिन से, मिनरल्स से, उनकी कमी होना, जिससे बच्चा अल्प पोषण होता है और उसके खान पान की जो जरूरत होती है उनके तत्वों में उनका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका जो असर है उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और उसके विकास पर भी पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे उसके शरीर का कमजोर पड़ जाना, अंगों के विकास का रुक जाना, या जल्दी जल्दी जैसे बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो ये जो हमें असर नजर आते हैं वो बच्चे के स्वास्थ्य पर नजर आते हैं। और अगर हम विकास की बात करें तो कुपोषण के कारण बच्चे की जो लंबाई है अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती है और उसका मानसिक और बौद्धिक विकास भी धीमा हो जाता है, जिससे सीखने की क्षमता पर उसका बुरा असर पड़ता है और उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कुपोषण की शुरुआत में बच्चे के शरीर या व्यवहार में कौन कौन से ऐसे संकेत हमें दिखाई देते हैं जिन्हें माता पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसमें माता पिता को विशेष ध्यान देना होगा बच्चे की ओर, जैसे कि उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है बच्चे के, जैसे कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बच्चा बिना किसी वजह के लगातार चिड़चिड़ापन कर रहा है, बहुत ज्यादा रोता है या एकदम से सुस्त रहता है, ये उसके व्यवहार में बदलाव लाता है। फिर उसकी कमजोरी की तरफ देखें, जैसे खेलने कूदने में उसकी रुचि कम होती है और बहुत जल्दी वो थक जाता है, तो उसकी कमजोरी का एक संकेत है।
0: बिल्कुल।
1: फिर एक उसका शारीरिक संकेत है, जैसे उसकी स्किन है वो सूखी या बेजान सी हो जाती है, ठीक है, और उसके जो बालों का जो कलर है वो बदलता हुआ नजर आने लगता है या बाल उसके झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बनने हुए होते हैं और उसके जो पैर होते हैं पैरों में सूजन आ जाती है, और उसकी उम्र के अनुसार उसका वजन कम होता है, पतला दुबला होता है और उसके शरीर की हड्डियां दिखने लग जाती हैं, और भूख की कमी होती है। जैसे सामान्य बच्चे जो भोजन खा रहे होते हैं तो उसकी तुलना में जो कुपोषण बच्चे होते हैं वो खाना कम खा पाते हैं। तो ये सारे ही जो बदलाव है उसके व्यवहार को लेकर, कमजोरी, शारीरिक संकेत और भूख की कमी, तो इन चीजों को माता पिताओं को अपने ध्यान में लाना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बात कही है। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि किन उम्र के बच्चों या किन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों में कुपोषण का खतरा अधिक होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि कुपोषण में हम उम्र की बात करें तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। ये बच्चे उस समय दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की जरूरत उन्हें पड़ती है, ऊपरी आहार सही मात्रा में सही समय पर शुरू करना चाहिए हमें, और अगर शुरू नहीं कर पाते हैं तो बच्चा कुपोषित का शिकार हो जाता है।
0: जी जी।
1: और अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां जैसे हो सकती हैं, जैसे गरीब है या आर्थिक तंगी से सूझ रहे हो, परिवार के बच्चे, वहाँ साफ सफाई की कमी हो, दूषित पानी की समस्या हो, या बच्चे बार बार दस्त या इन्फेक्शन का शिकार होते हो, जिनके माताओं को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिला, जिससे बच्चे के जन्म के समय वह बच्चा कमजोर या कुपोषित जन्म लेते हैं, तो ये उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किन परिस्थितियों में बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कई माता पिता घर पर ही बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, वे घर पर किन बातों पर ध्यान देकर यह समझ सकते हैं कि बच्चे के पोषण और विकास की जांच करवाने की जरूरत है?
1: हाँ बिल्कुल, जब माता पिता को घर में जब हमारे बच्चे हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि हमें डॉक्टर के पास कब ले जाना है, तो माता पिता ये ध्यान में लाएं कि बच्चों के जो कपड़े और जूते हैं उनका जो नाप है वो नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े छोटे होते हैं, जूते छोटे पड़ जाते हैं। अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उसके जूते और कपड़ों का नाप है वो छोटा पड़ जाएगा। अगर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो उसके कपड़े और जूतों का जो नाप है वो एज इट इज रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: वजन का नहीं बढ़ना, जैसे कि हर महीने जब हम बच्चे का वजन ले रहे हैं तो बच्चे का जो वजन है वो उसका सामान्य तौर पर लगातार 3 माह तक उसका वजन सामान्य आ रहा है, यानी कि वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ये भी एक हमारे लिए संकेत है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स वह कहीं ना किसी प्रकार से कुपोषित का शिकार हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: गतिविधियों को लेकर जब हम बात करें तो बच्चा जैसे दूसरों की तुलना में वो अपनी जो एक्टिवनेस है यानी वो कम रखता है। कुछ बच्चे फुर्तीले होते हैं जो सामान्य होते हैं, और जो कुपोषित के शिकार होते हैं वो सामान्य की तुलना में कम फुर्तीले होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, चल फिर नहीं पाते हैं, और खान व खान पीने में भी वो अपनी कमी महसूस रखते हैं। तो इस तरह से जब हम हमारे बच्चों में इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। लेकिन हम अब देखते हैं कि अक्सर परिवारों में ये माना जाता है कि जो बच्चा दुबला या कम वजन वाला है वह कुपोषित है। क्या कम वजन होना हमेशा कुपोषण का संकेत होता है या इसके लिए दूसरी बातों का भी हमें ध्यान देने की जरूरत है?
1: जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ कम वजन होना ही कुपोषण का एकमात्र पैमाना नहीं है। कुछ बच्चे अनुवांशिक कारणों से भी दुबले हो सकते हैं लेकिन वे पूरी तरह से फुर्तीले और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के में कुपोषण को समझने के लिए वजन के साथ साथ हमें दूसरी ओर भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि क्या बच्चा उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ रही है, क्या बच्चा एक्टिव है, क्या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है।
0: बिल्कुल।
1: क्या बच्चे की जो बाहों की गोलाई है वो क्या सामान्य, जब हम नाप रहे हैं तो वो क्या सामान्य है या नहीं, तो इस तरह की चीजों को और भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वहां की गोलाई को हम नाप रहे हैं तो उसका जो मापन है इसमें सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित इस तरह की कैटेगरी आती है, तो उस कैटेगरी के नाप के माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि बच्चा हमारा किस श्रेणी में है। जैसे कि वजन को लेकर जब हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी सेंटर्स, महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें एक ग्रोथ मॉनिटरिंग का एक पार्ट है जिसमें हर माह बच्चे का वजन लिया जाता है। बच्चे के वजन के साथ साथ उसकी ऊंचाई देखी जाती है और उसके पोषण के स्तर का भी ध्यान रखा जाता है।
0: जी जी।
1: उसके वजन और उसके पोषण दोनों का ध्यान रखते हुए उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग का प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें बता रही है कि किस तरीके से दुबला पतला बच्चा ही या कम वजन वाला बच्चा ही कुपोषित हो, ऐसा नहीं होता है। हमें बच्चों के संकेतों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होती है। यही मैम हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार बीमार पड़ने और बच्चों के पोषण के बीच क्या संबंध है? क्या कमजोर पोषण से बच्चे की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि कमजोर सीधे और तौर पर बच्चे बीमार के लड़ने की क्षमता यानी कि उसकी इम्यूनिटी को घटा देता है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे के शरीर में पोषण नहीं होता है, वो वायरस और बैक्टीरिया उस पर आसानी से हमला कर देते हैं। जब बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, जैसे उसको दस्त है, निमोनिया है, इस तरह से अगर बार बार वो संकेत नजर आ रहे तो उसका शरीर भोजन से जो पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता है जिससे वह ज्यादा कुपोषित हो जाता है। इसलिए अच्छा पोषण ही बीमारी से बचने के लिए सबसे मजबूत ढाल साबित होती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कुपोषण की स्थिति में कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर माता पिता को घर पर इंतजार नहीं करना है बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।
1: जैसे कि जो बच्चे कुपोषण के शिकार है उनको हमें डॉक्टर के पास ले जाना है, तो उससे पहले हम हमारे ही आसपास हमारे जो माहौल है उसको हम देख पाए, जैसे हमारा वातावरण कैसा है, कहीं दूषित वातावरण तो नहीं है जिससे बच्चे शिकार हो पा रहा है। बच्चे के पैरों में जो सूजन आ जाती है क्या वो सूजन तो नहीं है, क्या वो गंभीर कुपोषण का संकेत तो नहीं कर पा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: क्या बच्चा अचानक बहुत ज्यादा उसकी चमड़ी जो उसकी स्किन है वो पतली हो रही है और हड्डियां नजर आ रही है, अत्यधिक दुबलापन नजर आता है, वो कुपोषण का शिकार होता है। जब बच्चे में खाने में कमी आती है और माँ का जो दूध है वो पूरी तरह से नहीं पी पाता है, वो असमर्थ रहता है, मतलब जैसे उसको भूख लगनी चाहिए बार बार वो भूख नहीं लग पाती है और वो थोड़ा सा असहज रहता है, माँ के दूध के प्रति लगातार उस बच्चे में बीमारी के संकेत देख सकते हैं, जैसे कि उसको बार बार बुखार आ रहा है, कभी उल्टी दस्त हो रहे हैं, बच्चा कभी बेहोश हो जाता है या सुस्त पड़ा रहता है। तो इस तरह के जो संकेत हमें हमारे घर में जो बच्चे के नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए हमें तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र परिवारों तक पोषण संबंधित जो सेवा है वो पहुंचाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो कुपोषण की पहचान, निगरानी और बचाव में आंगनबाड़ी केंद्र परिवार की किस तरह मदद करते हैं?
1: बिल्कुल, जैसा कि हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ीज हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो भौतिक रूप से जो नींव है वो आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो हमारे लाभार्थी हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, धात्री महिलाएं भी होती हैं, और 0 से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, और 6 माह से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चों की निगरानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जाती है। और अभी जैसे हमने बात की कि हम राष्ट्रीय पोषण माह मनाने जा रहे हैं, तो अभी जो पोषण माह है वो 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है 2026, जिसकी मुख्य थीम हमारी है कि हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसलिए कि हमारे जो गांव में, हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनकी पूरी तरह की जो जिम्मेदारी है वो आंगनवाड़ी केंद्र ने ले रखी है। वहां पे जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं उन बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेवाएं दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत निगरानी है, पूरक पोषण है, रेफरल सेवाएं हैं, ECCE है, परामर्श जांच है, MCHN डे है, इस तरह की सेवाएं आंगनवाड़ी पर उपलब्ध है।
0: बिल्कुल।
1: और जब मैं आंगनवाड़ी निगरानी की बात करूं तो बच्चों के जो कुपोषित की हम बात कर रहे हैं उसमें निगरानी के अंदर हम बच्चों के लंबाई और वजन को नापा जाता है और उसकी ग्रोथ मॉनिटर पर नजर रखी जाती है। हर महीने वजन लिया जाता है, उसकी वजन की बढ़ोतरी या कमी को इंडिकेट करके, उसे इंकित करके जो विभाग के पोषण ट्रैकर ऐप चलता है उसके अंदर उसको दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के उपरांत तो उसमें बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि बच्चा किस श्रेणी के अंदर आ रहा है, वो सामान्य है, कुपोषित है या अति कुपोषित है। अगर वो कुपोषित के अंदर आ रहा है तो उस बच्चे की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण के रूप में उन्हें THR है, गर्म भोजन है, नाश्ता है, इस तरह की जो फूड जो प्रोवाइड कराया जाता है वो बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और जब बच्चा अति गंभीर कुपोषित में आता है तो उन बच्चों को अपनी जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से NM और आशा के माध्यम से उस बच्चे की चिन्ह को इंगित करके उसे MT से रेफर किया जाता है, ताकि वहाँ पे उस बच्चे की सही से ठीक ठाक से उसकी ऊपरी आहार के माध्यम से उसकी सही डाइट और उसको सही दवाई प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि वो बच्चा ठीक हो सके।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो किस तरीके से परिवार की इन सारी चीजों में मदद करता है, यही हम देखते हैं कि सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। तो किस तरीके से और कहां उन्हें संपर्क करने की जरूरत है और क्या प्रक्रिया होती है?
1: बिल्कुल, सरकारी योजनाओं में जब मैं बात करूं तो महिला एवं बाल विकास विभाग उसके अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, दूध योजना, न्यूट्री किट योजना, इस तरह की कई योजनाएं हैं जो हमारे विभाग के द्वारा दी जाती है जो महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले तो हम फील्ड में ये मैसेज करना है कि जितने भी हमारे लाभार्थी हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: रजिस्ट्रेशन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर एक ऐप चलता है, उस ऐप के माध्यम से लाभार्थी को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्हें उनकी बैंक डायरी, आधार और ममता कार्ड, इन चीजों की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से उनकी EKYC और FRS के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिए जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ वो DBT के माध्यम से उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि योजनाओं का लाभ और प्रक्रिया क्या रहती है और कैसे जो माता पिता है वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, यही हम देखते हैं कि बहुत सी बार अगर बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो माता पिता घबरा जाते हैं, तो क्या उचित देखभाल के माध्यम से बच्चा पूरी तरीके से फिर से स्वस्थ हो सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, कुपोषण कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यदि सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए उचित खानपान, प्यार भरी देखभाल और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ, सामान्य और ऊर्जावान हो सकता है। सरकार के एनटीसी रेफर से बच्चों को मुफ्त में इलाज करके विशेष डाइट देकर बच्चे को कुपोषण से सामान्य की ओर लाया जा सकता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कुपोषण को लेकर हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे जो श्रोता साथी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, पोषण को लेकर मैं संदेश देना चाहूंगी कि बच्चे का पोषण देश का रोशन भविष्य है। बच्चे जीवन की शुरुआती 1000 दिन यानी कि गर्भावस्था के 9 महीने और जन्म के 2 वर्ष तक सबसे महत्वपूर्ण समय काल होता है। इस दौरान उसके देखभाल, खान पान, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जीवन भर की बीमारियों से बचाता है। लड़के और लड़कियों के पोषण में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जागरूक बनना चाहिए, समय पर बच्चों की टीकाकरण करवाना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर हमें एक स्वस्थ बच्चे की, एक खुशहाल परिवार और मजबूत देश की नींव रखनी है।
0: बिल्कुल मैम, तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: श्रोता साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत से हमने जाना कि कुपोषण को समय पर पहचानना और सही कदम उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों का कम वजन, कमजोरी, विकास में कमी या बार बार बीमार पड़ना ऐसे संकेत हो सकते हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर नियमित नजर रखें, उनके भोजन में विविधता और पोषण पर ध्यान रखें और समय समय पर उनकी जाँच करवाते रहें। याद रखिए, स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। यदि आपको अपने बच्चे के विकास या पोषण को लेकर कोई चिंता हो तो आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता, एएनएम दीदी या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे रेडियो पर भी उन सवालों को ईमेल आईडी के माध्यम से मेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम विशेषज्ञ के माध्यम से जानेंगे और आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको अंत में कहना चाहूंगी कि बच्चे के स्वास्थ्य में छोटा सा बदलाव भी कभी कभी बड़े संकेत की ओर इशारा कर सकता है, इसलिए समय पर पहचान, सही पोषण और उचित सलाह बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, संबंध भी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी है।
0: जी हाँ
1: साथियों, कहा जाता है कि इंसान अकेले नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और रिश्तों के बीच रहकर बनता है। हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारी मेहनत और हमारी प्रतिभा निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व को निखारती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमारे संबंध और व्यवहार ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं या नहीं। आज का युवा पढ़ाई करता है, करियर बनाने में सपने देखता है, नई तकनीक सीखता है, कशिश अपने लक्ष्य भी निर्धारित करता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इन सब के साथ एक सवाल भी बहुत जरूरी है कि क्या हम अच्छे संबंध बनाना और उन्हें निभाना भी सीख रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि जीवन में सफलता केवल ये नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुँचे, बल्कि ये भी है कि उस ऊंचाई तक पहुंचते हुए हमने कितने लोगों का सम्मान किया।
0: जी हाँ।
1: कितने रिश्तों को संभाला और कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ा।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ पहले हम दोस्तों को मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना शुरुआत पहले गीत के साथ हम करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारे संबंध भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर बात करें जागृति जी, तो संबंध सबसे पहले व्यक्तित्व का पाठ ही सिखाते हैं। वो कैसे श्रोता साथियों? तो हमारा व्यक्तित्व केवल हमारे कपड़ों, बोलने के तरीके या आत्मविश्वास से नहीं बनता। व्यक्तित्व में हमारी सोच, हमारा व्यवहार, भावनाएं, निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों के प्रति सम्मान और कठिन परिस्थितियों में हमारा रवैया कैसा होता है, ये भी शामिल होता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इन गुणों को सीखने की पहली जगह अक्सर हमारा परिवार ही होता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य जो हैं, वो हमें सिखाते हैं कि सम्मान क्या है, जिम्मेदारी क्या होती है, सहयोग कैसे करना होता है और किसी के साथ खड़े रहना क्या होता है। जागृति जी, जब कोई युवा अपने परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुनता है और उनकी भावनाओं को समझता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है, तो उसके अंदर संवेदनशीलता के साथ साथ जिम्मेदारी जैसे गुण भी विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यही छोटे छोटे गुण जो होते हैं, वो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान बनते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन में दोस्तों का प्रभाव तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्त हमारे विचारों, हमारी आदतें, निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए दोस्त चुनते समय केवल ये देखना जरूरी नहीं है कि कौन हमारे साथ मौज मस्ती करता है, बल्कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल।
1: एक अच्छा दोस्त वो नहीं श्रोता साथी जो हर बात में हमारी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि अच्छा दोस्त तो वो है जो जरूरत पड़ने पर हमें सही समझाए, हमारी गलती बताए और हमारे सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक सकारात्मक संगति युवा के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग और सकारात्मक सोच विकसित कर सकती है कशिश।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कहा जा सकता है कि जैसी संगति वैसी सोच और जैसी सोच वैसा व्यक्तित्व।
0: जी हाँ जागृति जी, आज श्रोता साथियों हमारे पास संवाद करने के ढेर सारे साधन हैं।
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, इन सभी ने हमारी दूरी को कई हद तक कम कर दिया है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे बीच संवाद बढ़ा है साथियों? ये सोचने वाला प्रश्न है। कई बार हम घंटों ऑनलाइन रहते हैं जागृति जी, लेकिन अपने ही परिवार के किसी सदस्य से कुछ मिनट खुलकर बात नहीं कर पाते।
1: जी हाँ
0: साथियों, सच्चा संबंध केवल मैसेज या इमोजी से नहीं बनता। उसके लिए जरूरी है सुनना, समझना और अपनी बात सही तरीके से रखना।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में युवाओं के व्यक्तित्व में संवाद कौशल की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम अपनी बात शांतिपूर्वक रखते हैं जागृति जी, दूसरों की बात बीच में काटे बिना सुनते हैं और असहमति होने पर भी सम्मान बनाए रखते हैं साथियों, तो हमारा व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली बनता है। इसलिए आप हमेशा ये बात याद रखिए कि अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, जैसा कि आपने बताया कि संवाद मजबूत संबंधों की नींव है। यही अगर बात करें कि मतभेद होना गलत नहीं, रिश्ते तोड़ देना गलत हो सकता है, इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो श्रोताओं, हर संबंध में विचारों की समानता संभव नहीं है।
0: जी हाँ,
1: परिवार में, दोस्तों के बीच में, कॉलेज में या कार्यस्थल पर हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं होता है। परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान यही कि हम अपनी बात पर कायम रहते हुए दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें।
0: जी हाँ,
1: कई बार छोटी सी गलतफहमी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। ऐसे समय में अहंकार से नहीं, संवाद से समाधान निकालना होगा।
0: बिल्कुल।
1: मैं सही हूँ साबित करने से ज्यादा जरूरी है हमारा संबंध सही रहे, ये सोचना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि ये तो आपने हमारे युवा साथियों को बताया, मतभेद होना गलत नहीं है लेकिन रिश्ते तोड़ देना गलत हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: तो इसी विषय को लेकर आगे भी कार्यक्रम में और बातें होंगी। हम जानेंगे कि अच्छे संबंध हमारे युवा साथियों के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो बातें और भी करेंगे युवा साथियों, लेकिन अभी आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि संबंध भी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने संबंध हमें सबसे पहला व्यक्तित्व पाठ सिखाते हैं इसको जाना था, साथ ही हमने दोस्ती भी व्यक्तित्व को आकार देती है इसके बारे में जाना था, संवाद मजबूत संबंधों की नींव है ये भी जाना था, और मतभेद होना गलत नहीं, रिश्ते तोड़ देना गलत हो सकता है ये भी हमने जाना था।
1: जी बिल्कुल,
0: यही जानते हैं अच्छे संबंध आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यानी कि कशिश, जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी मेहनत की सराहना करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी एक छोटा सा वाक्य तुम कर सकते हो किसी युवा को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। इसी तरह श्रोताओं, हमें भी अपने दोस्तों और आसपास के युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उसकी सराहना करना होगा, क्योंकि दूसरों को ऊपर उठाने से हमारा व्यक्तित्व छोटा नहीं होता बल्कि और बड़ा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ युवा साथियों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे संबंध केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं होने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हमारे जो संबंध होते हैं वो हमारे आसपास के पूरे समाज से भी जुड़े होते हैं। हम पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं, बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं, छोटे बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, सहकर्मियों के साथ हम कैसे पेश आते हैं, ये सभी बातें जागृति जी हमारे युवा साथियों के व्यक्तित्व को दर्शाती है। एक युवा जब अपने समुदाय की समस्याओं को समझता है, जरूरतमंद की मदद करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो उसमें नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित होती है। यहीं से दोस्तों युवा आगे चलकर समाज का जिम्मेदार नागरिक बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने संबंधों को एक नया रूप दिया है। हमारे पास सैकड़ों ऑनलाइन कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी वास्तविक संबंध हो।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये समझना होगा कि फॉलोअर्स की संख्या और सच्चे संबंधों की संख्या एक जैसी चीज नहीं है। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर अपने जीवन की तुलना करना भी सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसकी वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने, सकारात्मक विचार साझा करने और लोगों से जुड़ने के लिए करें। और सबसे जरूरी बात है कि ऑनलाइन बातचीत में भी वही सम्मान रखें जो हम आमने सामने बातचीत में रखते हैं।
1: बिल्कुल साथी दोस्तों, संबंध बदलते हैं और हमें सिखाते भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि जीवन में हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है जागृति जी। कोई हमें धैर्य सिखाता है, तो कोई मेहनत करना सिखाता है, कोई हमें अपनी गलतियों से सीखना भी सिखाता है श्रोता साथी, तो कोई हमें माफ करना सिखाता है। कभी कभी कोई संबंध हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन वह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक जरूर दे जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हर संबंध से केवल एक अपेक्षा न करें, मुझे इससे क्या मिलेगा, कभी ये भी सोचे साथियों कि मैं इस संबंध में क्या अच्छा दे सकता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: और जागृति जी यही सोच हमारे युवा साथियों के व्यक्तित्व को अधिक संवेदनशील और परिपक्व बनाएगी।
0: जी हाँ कशिश, और हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि कुछ छोटे

0: छोटी बातें हैं जो हमें हमारे दिल में उतारनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि हम हर बातचीत में केवल अपनी बात रखने के बजाय सामने वाले की बात को भी सुननी होगी। उम्र, पद या परिस्थिति चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आना है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहे जो आपको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाए। माफी मांगना कमजोरी नहीं है श्रोताओं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है।
1: बिल्कुल,
0: व्यस्त जिंदगी में भी परिवार, दोस्त और समाज के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: जी हाँ,
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि व्यक्तित्व केवल हमारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और संबंधों से भी पहचानी जाती है। हम कितना अच्छा बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम कितने सफल हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारी सफलता में हमारे साथ खड़े लोगों के प्रति हमारा सम्मान बना रहे। इसीलिए अपने सपनों के साथ साथ अपने संबंधों को भी समय दीजिए, अपनों को सुनिए, दोस्तों को समझिए, मतभेदों को संवाद से सुलझाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मजबूत रिश्ते हमें सहारा देते हैं, अच्छे संबंध हमें संस्कार देते हैं और सकारात्मक संबंध हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों कहना चाहेंगे कि जीवन की असली खूबसूरती केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि अच्छे संबंध बनाने और उन्हें सम्मान के साथ निभाने में भी है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका व्यक्तित्व आपकी बातों से कम और आपके व्यवहार, संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति सम्मान से ज्यादा पहचाना जाता है। इसलिए युवा साथियों, अपने परिवार को आप समय दें, सच्चे मित्रों की कद्र करें, मतभेदों को संवाद से सुलझाएं और जरूरत पड़ने पर दूसरों का हाथ थामने से पीछे न हटें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, अच्छे संबंध हमें केवल खुशी नहीं देते, वे हमें एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। दोस्तों, रिश्तों को समय दीजिए, लोगों का सम्मान कीजिए और अपने व्यवहार में इंसानियत को रखिए। आपको बताना चाहेंगे कि यही एक सुंदर व्यक्तित्व की सच्ची पहचान होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए संबंध को संवारिए, व्यक्तित्व को निखारिए और समाज को बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दीजिए।
0: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 94140826 43।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
3: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है हर हाथ में शिक्षा हर गांव में ज्ञान को लेकर। अंजलि, हम कहना चाहेंगे कि जिस हाथ में कलम होती है वो हाथ केवल अपना भविष्य नहीं लिखता बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदलने की ताकत भी रखता है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस गांव में ज्ञान का दीप जलता है वहां विकास की रोशनी दूर तक फैलती है। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए हर हाथ में शिक्षा और हर गांव में ज्ञान, क्योंकि श्रोताओं, शिक्षा केवल अक्षर पहचानना नहीं बल्कि सही और गलत में अंतर समझने, अपने अधिकार को जानने और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है हर हाथ में शिक्षा और हर गांव में ज्ञान को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हर गांव में ज्ञान की बहार हो, किताब हाथ में ज्ञान साथ में हो, गांव चले विकास की राह में।
1: जी हाँ चक्रवर्ती जी, क्योंकि जिस हाथ में कलम होती है वह हाथ केवल अपना भविष्य नहीं लिखता बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस गांव में ज्ञान का दीप जलता है वहां विकास की रोशनी दूर तक फैलती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज आवश्यकता केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की नहीं बल्कि शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने और ज्ञान को गांव-गांव तक फैलाने की है। हर आत्मी शिक्षा और हर गांव में ज्ञान केवल एक नारा नहीं है बल्कि ऐसे समाज की कल्पना है जागृति जी, जहां कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई युवा अवसरों की कमी के कारण पीछे न छूटे और कोई महिला अपने अधिकारों से अनजान न रहे और कोई किसान नई जानकारी के अभाव में विकास की दौड़ से बाहर न हो। क्योंकि श्रोता साथियों, शिक्षा व्यक्ति को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती बल्कि उसे सोचने समझने प्रश्न करने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। ज्ञान व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है, समाज को आगे बढ़ने की दिशा देता है। इसलिए शिक्षा और ज्ञान को प्रत्येक गांव की सबसे बड़ी पूंजी बनाना समय की आवश्यकता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि शिक्षा जीवन का वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वह अपने परिवार समाज और देश के विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। शिक्षा हमें केवल नौकरी पाने के योग्य नहीं बनाती बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी देती है। एक शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, कानून, तकनीक और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को समझ सकता है। अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और जागरूक होगा तो बाल विवाह, भेदभाव, अंधविश्वास, नशे की बुराई, अशिक्षा और कई सामाजिक समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें हर बच्चे तक पहुँचे शिक्षा को लेकर, तो श्रोता साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे के हाथों में होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना बहुत आवश्यक है। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो जागृति जी, लेकिन गांव हो या शहर, लड़की हो या लड़का, हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। बच्चों को केवल विद्यालय में दाखिला दिलाना पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी है कि वे नियमित रूप से विद्यालय जाएं, सीखने में रुचि लें, उन्हें ऐसा वातावरण मिले जिसमें वे अपने सवाल पूछ सकें। माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों को केवल परीक्षा और अंक प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि किसी समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार महिलाओं की शिक्षा है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं मिलता बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी मिलता है।
1: जी।
0: शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, अधिकारों और परिवार से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से समझ सकती है। वो बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर और अधिक जागरूक होती है। इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि बेटी पढ़ेगी परिवार पढ़ेगा, बेटी बढ़ेगी समाज पढ़ेगा। हर गांव में ये वातावरण बनाना होगा हमें कि बेटियों की शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि भविष्य में निवेश समझा जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, हमारे गांव केवल कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के केंद्र नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ज्ञान और अनुभव की भी बड़ी संपदा रखते हैं। गांव के बुजुर्गों के पास खेती, पशुपालन, मौसम, लोक परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान होता है।
0: जी हाँ।
1: यदि श्रोता साथियों, इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ा जाए तो गांव में विकास की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। हर गांव में पुस्तकालय, डिजिटल लर्निंग सेंटर, सामुदायिक अध्ययन केंद्र और प्रशिक्षण गतिविधियां विकसित की जा सकती हैं। इसी के साथ जागृति जी, जहां बच्चे किताबें पढ़ सके, युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, किसान नई कृषि तकनीक सीख सके, महिलाएं नए कौशल प्राप्त कर सके, ऐसी चीजें गाँव में होनी चाहिए ताकि हर युवा जो है वो समाज को आगे ले जाने में, समाज की जो चीजें हैं उनको उज्जवल करने की शक्ति रख पाए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम सभी जानते हैं कि युवा समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि युवाओं को सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन मिले तो समाज में बदलाव आता है और गांव की तस्वीर बदल सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि श्रोता साथियों, हर युवाओं को सोचना होगा कि मैंने जो सीखा है उसे केवल अपने तक सीमित क्यों रखो, क्यों ना अपने ज्ञान से किसी और का भविष्य भी बेहतर बनाओ।
1: बिल्कुल,
0: यही सोच ज्ञान को व्यक्तिगत उपलब्धि से सामुदायिक शक्ति में बदल सकती है अंजलि। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, हर हाथ में शिक्षा और हर गांव में ज्ञान को लेकर, तो ये बातें निरंतर बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि हमने गीत से पहले जाना कि किस तरीके से गांव बने ज्ञान का केंद्र, इसके लिए हम गांव में ही पुस्तकालय और कई अलग अलग ऐसे प्रशिक्षण की जो चीजें हैं वो खोल सकते हैं, ताकि दूसरे जो युवा हैं उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण अच्छे से मिल पाए।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है डिजिटल शिक्षा से गांव को मिले नई दिशा की। तो श्रोता साथियों, आज तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए अवसर खोल दिए हैं। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं जागृति जी कि कई युवा देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, डिजिटल पुस्तकों और शैक्षिक सामग्री से सीखने के नए रास्ते खुले हैं, लेकिन डिजिटल संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना जरूरी है। मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन न बनकर रहे बल्कि सीखने और जानकारी प्राप्त करने का माध्यम भी बने। गाँव में डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर युवाओं और ग्रामीण परिवारों को तकनीक के सकारात्मक उपयोग से जोड़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि डिजिटल ज्ञान अपनाना गांव को सशक्त बनाना होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंजलि, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम यही बताते हैं। इसीलिए किसान तक भी ज्ञान पहुँचाना उतना ही जरूरी है जितना विद्यार्थियों तक पहुँचाना। मौसम की जानकारी हो गई, मिट्टी की स्थिति हो गई, फसल चयन हो गया, जल संरक्षण हो गया, आधुनिक कृषि तकनीक हो गए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और बाजार से संबंधित जानकारी किसान के लिए उपयोगी हो सकती है। श्रोता साथियों, जब किसान अनुभव के साथ नई जानकारी को जोड़ता है अंजलि, तो बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसीलिए हर गांव में ज्ञान का अर्थ केवल बच्चों की शिक्षा नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण समाज को सीखने के अवसर देना है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, आज के समय में केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमारे युवा साथियों को कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना भी बहुत जरूरी है अंजलि। कंप्यूटर हो गया, डिजिटल सेवाएं, कृषि आधारित कौशल, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और अन्य स्थानीय रोजगार से जुड़े कौशल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकते हैं। गांव के युवाओं की ये सोच विकसित करनी होगी कि सफलता का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं है श्रोताओं, अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर अवसर पैदा करना भी सफलता का रास्ता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाए।
1: बिल्कुल,
0: ज्ञान के साथ ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता, सहयोग, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान भी आवश्यक है। श्रोता साथियों, यदि व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी न समझे तो उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो दिमाग को ज्ञान, हृदय को संवेदना और हाथों को कौशल दे।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ज्ञान से अंधविश्वास और अफवाहों से हमें मुक्ति मिलती है। अज्ञानता कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। सही जानकारी और वैज्ञानिक सोच लोगों को अफवाहों, अंधविश्वास और गलत धारणाओं से बचाने में मदद करती है। आज सोशल मीडिया के समय में किसी भी जानकारी को बिना जांचे आगे बढ़ाना नुकसानदायक हो सकता है श्रोताओं। शिक्षित और जागरूक नागरिक जानकारी की सत्यता समझने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षा हमें केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि जानकारी को परखना भी सिखाती है। साथ ही हर गांव को ज्ञानवान बनाने की जिम्मेदारी केवल शिक्षक या विद्यालय की नहीं है।
0: जी जी।
1: इसके लिए पूरे समुदाय को आगे आना होगा। पंचायत, शिक्षक, माता पिता, युवा, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर शिक्षा का वातावरण बना सकते हैं अंजलि। गांव में यदि कोई व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ है तो वो बच्चों और युवाओं के साथ अपना अनुभव साझा कर सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, युवा डिजिटल शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं और महिलाएं अपने अनुभव एवं कौशल को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह श्रोता साथियों, गांव स्वयं एक जीवंत विद्यालय बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हर गांव में एक अच्छा पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र बन सकता है। किताबें व्यक्ति को नए विचारों से परिचित कराती है और उनकी कल्पना और सोचने की क्षमता को विकसित करती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बच्चों और युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। गांव में सप्ताह में एक दिन सामूहिक पठन, कहानी सुनाने, चर्चा और ज्ञान विनिमय जैसी गतिविधियां आयोजित की जा सकती है। एक किताब एक व्यक्ति को बदल सकती है और बदला हुआ व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षा व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति देती है। वह अपने निर्णय स्वयं लेने, समस्याओं को समझने और अवसरों की पहचान करने में सक्षम बनता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कह सकते हैं जागृति जी कि एक शिक्षित युवा अपने गांव में ही नए अवसर पैदा कर सकता है। वह स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यवसाय शुरू कर सकता है और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बना सकता है। इस प्रकार शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार भी बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हर हाथ में शिक्षा और हर गांव में ज्ञान का सपना तभी पूरा होगा जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। यदि हमारे पास कोई ज्ञान या कौशल है तो उसे दूसरों के साथ साझा भी जरूर कीजिए। अगर गांव में शिक्षा से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाइए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बदलाव कोई और करेगा, बदलाव की शुरुआत हम स्वयं कर सकते हैं। एक व्यक्ति पढ़ाएगा, दूसरा सिखाएगा, तीसरा आगे बढ़ाएगा और धीरे धीरे पूरा गाँव ज्ञान की रोशनी से जगमग उठेगा।
0: बिल्कुल, कह सकते हैं श्रोता साथियों कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी इमारतों, सड़कों या संसाधनों से नहीं होती है बल्कि उसके शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों में होती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हमारे गांव ज्ञान से समृद्ध होंगे तो देश की नींव मजबूत होगी। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जागृति जी, जहां कोई बच्चा शिक्षा से दूर न हो, कोई युवा अपने सपनों को पूरा करने के अवसरों से वंचित न रहे, कोई महिला अपने अधिकारों से अनजान न हो और कोई किसान नई जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। हर हाथ में शिक्षा, हर गांव में ज्ञान केवल आज का संकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। इसलिए श्रोता साथियों, हम मिलकर ज्ञान का दीप जला सकते हैं। एक बच्चे को पढ़ाएं, एक युवा को कौशल दें, एक परिवार को जागरूक

0: रुक करें और अपने गांव को सीखने का केंद्र बनाएं, क्योंकि जब हर हाथ में कलम होगी तभी हर आंख में सपनों की चमक होगी।
1: जी हाँ।
0: जब हर गांव ज्ञान से रोशन होगा तभी हमारा देश सशक्त और आत्मनिर्भर बन पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, जाना हर हाथ में शिक्षा, हर गांव में ज्ञान को लेकर बहुत सारी बातें, अब देख पा रहे हैं कि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, समाज बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक छोटी मदद और एक सम्मान भरा व्यवहार भी बदलाव की शुरुआत बन जाता है। हम अक्सर पूछते हैं कि समाज कब बदलेगा, लेकिन शायद हमें सवाल थोड़ा बदल कर पूछना चाहिए, समाज को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को, जहाँ हम बात करते हैं उन विचारों की जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे परिवार, गांव और पूरे समुदाय को नई दिशा दे सकते हैं। आज का विषय बहुत सरल है, लेकिन इसके भीतर समाज को बदलने की बहुत बड़ी ताकत छुपी है। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत मेरे एक अच्छे व्यवहार से कैसे होती है। बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत मेरे एक अच्छे व्यवहार से कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर समाज की समस्याओं की चर्चा करते हैं, कहीं गंदगी है, कहीं भेदभाव है, तो कहीं लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, कहीं बुजुर्ग अकेले हैं, तो कहीं बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते, कहीं छोटी सी बात पर विवाद बढ़ जाता है। श्रोता साथियों, हम इन सबको देख कर कहते हैं कि समाज को बदलना चाहिए, लेकिन समाज आखिर है क्या? समाज हमसे ही तो बना है। हम हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, इन सभी के व्यवहार से समाज का वातावरण बनता है। इसलिए समाज को बदलने की शुरुआत किसी दूर बैठे व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने व्यवहार से होती है। यही अब बात आती है कि अच्छा समाज आखिरकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अच्छा समाज केवल वह नहीं होता जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हो, सुंदर इमारतें हो या आधुनिक सुविधाएं हो। अच्छा समाज वह होता है जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करें, मुश्किल समय में साथ खड़े हों, कमजोर व्यक्ति को दबाने के बजाय उसका सहारा बने, बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिले, महिलाएं बिना डर अपनी बात रख सके, बुजुर्गों को बोझ नहीं अनुभव का स्रोत समझा जाए और मतभेद होने पर बातचीत से समाधान खोजने की कोशिश की जाए। ऐसा समाज केवल कानून से नहीं बनता, ऐसा समाज हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से बनता है। इसलिए श्रोता साथियों, हमेशा ऐसा व्यवहार करें जिससे हमारा जो समाज है वो सही दिशा में अग्रसर हो। हम कई बार अपने व्यवहार को बहुत छोटी चीज मान लेते हैं, सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, लेकिन एक व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह व्यक्ति तीसरे को प्रभावित करेगा और धीरे धीरे वही व्यवहार समुदाय की संस्कृति बन सकता है। मान लीजिए किसी गांव में एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा कचरा उठाकर सही जगह डाल देता है, दूसरा व्यक्ति उसे देखकर प्रेरित होता है, फिर तीसरा भी ऐसा करता है। कुछ समय बाद लोगों में यह भावना बनने लगती है कि हमारा गाँव हमारा घर है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, यकीन मानिए, बदलाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अच्छे समाज की सबसे बड़ी पहचान सम्मान होता है। सम्मान केवल बड़े लोगों को देना नहीं है, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, सफाई कर्मी का, शिक्षक का, बच्चे का, महिला का, बुजुर्ग का, और उस व्यक्ति का भी जिससे हमारे विचार अलग है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके सम्मान की कीमत तय नहीं करती। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पद या पैसे से नहीं, उसके इंसान होने से तय होती है। कई बार हमें लगता है कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी परेशान व्यक्ति से पूछना सब ठीक है, किसी बुजुर्गों का सामान उठाने में मदद करना, किसी बच्चे को रास्ता समझाना, किसी नए व्यक्ति का मुस्कुराकर स्वागत करना, किसी मेहनतकश व्यक्ति की मेहनत की तारीफ करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि इंसान केवल भोजन और सुविधाओं से नहीं, सम्मान और अपनापन से भी मजबूत होता है। तो साथियों, आज कार्यक्रम में जैसा कि हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत मेरे एक अच्छे व्यवहार से कैसे होती है, तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: टूटा टूटा एक प...

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है, बातचीत का तरीका समाज बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, समाज में कई विवाद इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। किसी बात से परेशानी है तो सीधे और सम्मान से बात कीजिए। आवाज ऊंची करने से बात सही नहीं हो जाती, अपमान करने से सामने वाला समझदार नहीं बन जाता और गुस्से में बोले गए शब्द कई बार वर्षों के रिश्ते को चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए अच्छे समाज की शुरुआत इस आदत से भी होती है कि पहले समझूंगा फिर प्रतिक्रिया दूंगा। जी हाँ श्रोता साथियों, हमें बच्चों में भी ये सारी चीजें सिखानी होगी क्योंकि बच्चे हमारी बातें सुनने से ज्यादा हमारा व्यवहार देखते हैं। यदि हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ मत बोलो लेकिन उसके सामने खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चा शब्द नहीं हमारा व्यवहार सीखेगा। यदि हम कहते हैं कि सभी का सम्मान करो लेकिन किसी गरीब व्यक्ति से बुरा व्यवहार करते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। इसलिए बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद अच्छा उदाहरण बनना। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को अच्छे समाज का भाषण देने से पहले उन्हें अच्छा समाज अपने व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज की संवेदनशीलता इस बात में भी दिखाई देती है कि वहाँ महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर महिलाओं की बात सुनी जाती है, उनकी राय को महत्व दिया जाता है, उनकी मेहनत को पहचाना जाता है, उनके साथ सम्मान से बात की जाती है और बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया जाता है तो यही व्यवहार हमारी सोच को बदलता है और वो धीरे धीरे समाज को बदलने में भी मदद करता है। इसी के साथ बुजुर्गों के साथ भी हमारा जो व्यवहार है वो सम्मानजनक होना चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव की ऐसी पूंजी है जिसे किसी किताब से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन बदलती जिंदगी में कई बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। हम उनके साथ कुछ समय बैठ सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनसे पुराने अनुभव पूछ सकते हैं, उनकी जरूरत के छोटे कामों में मदद कर सकते हैं और कभी कभी बुजुर्गों को दवा से पहले अपनापन चाहिए होता है। जी हाँ साथियों, अच्छा समाज हमारे घर के बाहर से शुरू नहीं होता, वह तो हमारे दरवाजे से ही शुरू होता है। पड़ोसी से नमस्कार करने से शुरू होता है, किसी की परेशानी में सहायता करने से शुरू होता है। बच्चों को लेकर छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। त्योहार या खुशी में एक दूसरे को शामिल करें और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें, यही पड़ोस को समुदाय बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों,

समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकता। हमारी पसंद अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं है। अच्छा समाज वह है जहाँ लोग अलग सोच रखते हुए भी एक दूसरे का सम्मान कर सके। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज हमारा व्यवहार केवल आमने सामने तक सीमित नहीं है, हम सोशल मीडिया पर भी समाज का हिस्सा है। श्रोता साथियों, किसी अफवाह को बिना जांचे आगे न भेजें, किसी की तस्वीर या निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल न करें, किसी को अपमानित करने वाली टिप्पणी करना, ये सब हमारे डिजिटल व्यवहार का हिस्सा है। इसलिए सच्चा नागरिक वही है जो वास्तविक जीवन के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी जिम्मेदार व्यवहार करे। इसलिए कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर कचरा न फैलाएं, पानी को व्यर्थ न बहने दें, जरूरतमंद को रास्ता देना, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, किसी की परेशानी देखकर मजाक न उड़ाना, गलती होने पर माफी मांगना, मदद मिलने पर धन्यवाद कहना, किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में गलत बात न फैलाना, बच्चों और बुजुर्गों से धैर्य पूर्वक बात करना, इनमें किसी काम के लिए बड़े संसाधन नहीं चाहिए, चाहिए केवल जिम्मेदार सोच। जी हाँ श्रोता साथियों, आज जब हम कार्यक्रम में इन सारी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम हमें जरूर करना है। आज हमें किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ करना है जिसे उसकी उम्मीद ना हो। किसी बुजुर्ग से प्यार से बात करनी है, घर में किसी की मेहनत की तारीफ करनी है, किसी जरूरतमंद की छोटी मदद कीजिए, किसी नाराज व्यक्ति से शांति से बात कीजिए, या किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जिसे आप लंबे समय से धन्यवाद नहीं कह पाए हैं। और रात को खुद से पूछिए कि मेरे इस छोटे से व्यवहार से क्या बदला। हो सकता है कि बदलाव बहुत छोटा हो, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होता है। एक छोटी सी कविता श्रोता साथियों आपको सुनाना चाहूंगी कि एक शब्द प्यार का बोलिए, किसी का न मन तोड़िए, जहाँ मिले कोई थका हुआ तो दो पल उसके साथ बैठिए। जी हाँ, बदलाव की बातें बहुत हुई, अब अपनी बारी आने दो। दुनिया कैसी होनी चाहिए पहले खुद वैसा बन जाने दो। एक दीपक जलाने से रोशनी शुरू होती है, एक कदम बढ़ाने से राह बनती है। समाज बदलने की उम्मीद छोड़िए नहीं, बस शुरुआत अपने व्यवहार से कीजिए। जी हाँ साथियों, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम हर किसी से विनम्र रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन विनम्रता और कमजोरी में बहुत अंतर होता है। अच्छा व्यवहार रखने का मतलब यह नहीं है कि हम गलत बात स्वीकार करें, इसका अर्थ है कि सही बात भी सम्मानजनक तरीके से कहें। हम दृढ़ हो सकते हैं और फिर भी संयम रख सकते हैं, हम अपनी सीमा तय कर सकते हैं और फिर भी सामने वाले का अपमान न करें, यही परिपक्वता है। श्रोता साथियों, अंत में कहना चाहूंगी कि अच्छा समाज किसी एक व्यक्ति के भाषण से नहीं बनता, वह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे मदद करते हैं, कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं और बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं, बच्चों के सामने कैसा उदाहरण रखते हैं, इन सभी चीजों से हमारे समाज का चरित्र बनता है। इसलिए समाज को बदलने के लिए हाथ में कोई बड़ा पद होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ही पहली शक्ति है। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज के कार्यक्रम की बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है स्थानीय भोजन की पहचान हमारी रसोई में छिपी संस्कृति को लेकर।
0: बिल्कुल
1: कशिश, जब हम भोजन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में रोटी दाल सब्जी और चावल जैसी चीजें आती हैं, लेकिन भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। भोजन हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है, हमारी मिट्टी से जुड़ी स्मृतियां हैं और पीढ़ियों से चली आ रही जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हम देखते हैं कि हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद होता है। कहीं बाजरे की रोटी प्रसिद्ध है तो कहीं मक्के का भोजन, तो कहीं ज्वार की रोटी, तो कहीं स्थानीय दालें साग जंगल से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, कहीं पारंपरिक सब्जियां, तो कहीं मौसमी फल लोगों की थाली का हिस्सा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही स्थानीय भोजन हमें बताता है कि हम किस मिट्टी से जुड़े हैं और हमारे पूर्वजों ने अपने वातावरण के अनुसार किस प्रकार की जीवन शैली अपनाई थी।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि स्थानीय भोजन क्या है, इसका हमारी संस्कृति से क्या संबंध है, आधुनिक जीवन शैली के कारण स्थानीय खान पान में क्या बदलाव आ रहे हैं और हम अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गिस्संगिस सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्थानीय भोजन की पहचान हमारी रसोई में छिपी संस्कृति को लेकर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं वो हमारे जीवन को लेकर केवल स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अंजलि जी, जब घर में ताजी रोटियां सिकती है, घी की खुशबू पूरे आंगन में फैलती है, दाल में तड़का लगता है और मसालों की महक मन को बचपन की यादों में ले जाती है।
1: जी हाँ।
0: तो क्या श्रोता साथियों, वो केवल भोजन होता है? नहीं, ये हमारी रसोई में पकने वाला हर व्यंजन अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए होता है।
1: जी हाँ।
0: और वह कहानी होती है हमारी मिट्टी की, मौसम की, परंपराओं की, मेहनत की और हमारी संस्कृति की।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कहा जाता है अंजलि जी कि हमारी रसोई केवल भोजन पकाने की जगह नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को सहेजने वाली एक जीवंत पाठशाला है।
1: बिल्कुल।
0: और आज का हमारा विषय भी यही है कि स्थानीय भोजन की पहचान क्या है और हमारी रसोई में संस्कृति कैसे छिपी है।
1: बिल्कुल कशिश, यही बात करें स्थानीय भोजन क्या होता है। तो श्रोता साथियों, स्थानीय भोजन का अर्थ है वह भोजन जो हमारे आसपास के क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो, स्थानीय किसानों द्वारा उगाया जाता हो या हमारे क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों और परंपराओं से जुड़ा हुआ हो।
0: बिल्कुल।
1: हमारे गाँवों और आदिवासी क्षेत्रों में वर्षों से लोग अपने आसपास उगने वाले अनाज, दालें, सब्जियां, फल और जंगली और जंगल से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करते आए हैं। ये खाद्य पदार्थ केवल स्वादिष्ट ही नहीं होते बल्कि स्थानीय जलवायु और जीवन शैली के अनुसार भी उगाए जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: उदाहरण के लिए राजस्थान और वागड़ जैसे क्षेत्रों में मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, स्थानीय दालें, मौसमी सब्जियां, साग और पारंपरिक जो व्यंजन है वो लंबे समय से लोगों के भोजन का हिस्सा रहे हैं। अलग अलग गाँवों और समुदाय में भोजन बनाने के तरीके भी अलग होते हैं। कहीं मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकने की परंपरा रही है तो कहीं लकड़ी की आंच पर विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, तो कहीं त्योहार और विशेष अवसरों पर पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यानी कि भोजन केवल सामग्री का मिश्रण नहीं है, उसके साथ जुड़ी है यादें, रिश्ते, परंपराएं और संस्कृति।
0: बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि दोस्तों हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, यहाँ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है और के साथ भोजन का स्वाद भी बदल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और बाजरे की रोटी की अपनी पहचान है, वहीं पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी लोगों के जीवन का हिस्सा है।
1: जी हाँ।
0: गुजरात में अंजलि जी ढोकला और खिचड़ी, दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर और बंगाल में मछली भात, उत्तर प्रदेश में कचौरी और अलग अलग प्रकार की दालें। साथियों, ये सभी केवल खाने की वस्तुएं नहीं है, इन व्यंजनों के पीछे वहाँ की जलवायु, कृषि, उपलब्ध संसाधन और जीवन शैली का गहरा प्रभाव दिखाई देता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए तो राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में ऐसे भोजन की परंपरा विकसित हुई है जिसे कम पानी में बनाया जाता हो, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। बाजरा, ज्वार, चना, दालें, सूखी सब्जी और अलग अलग प्रकार के मसाले यहाँ के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं। इससे श्रोता साथियों ये पता चलता है कि स्थानीय भोजन प्रकृति और मनुष्य के बीच बने संबंध की अभिव्यक्ति भी है।
1: बिल्कुल कशिश, यही बात करें कि हमारी रसोई संस्कृति का जीवंत घर कैसे है। तो श्रोता साथियों, किसी भी घर की रसोई उस परिवार की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाती है। रसोई में रखे मसाले, अनाज, बर्तन, भोजन बनाने की विविधता हमें उस परिवार और समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। पुराने समय में रसोई केवल खाना खाने की जगह नहीं थी, यह परिवार के एक साथ बैठने, बातचीत करने और अनुभव साझा करने का स्थान भी हुआ करती थी।
0: बिल्कुल।
1: दादी और नानी अपनी बेटियों और बहुओं को भोजन बनाना सिखाती थी। बच्चे अपने घर के पारंपरिक स्वाद को पहचानते थे, कौन सा व्यंजन किस त्योहार पर बनता है, कौन सा खाना किस मौसम में खाया जाता है और किस अवसर पर क्या बनाया जाता है, ये सारी बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी।
0: बिल्कुल।
1: इस प्रकार हमारी रसोई एक अनौपचारिक विद्यालय की तरह काम करती थी, हम भोजन के माध्यम से संस्कृति सिखाई जाती थी। आज भी यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे घरों की रसोई में ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनके पिछले वर्षों पुरानी परंपराएं रही हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्थानीय भोजन की पहचान और हमारी रसोई में जो हमारी संस्कृति छिपी हुई है इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आगे भी हम कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं बातों को जारी रखेंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की और जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कशिश, यहीं बात करें भोजन और हमारी मिट्टी के संबंध की। तो श्रोता साथियों, हमारी मिट्टी जलवायु और खेती की परिस्थितियां तय करती है कि हमारे क्षेत्र में कौन सी फसलें अच्छी तरह उग सकती हैं। इसी कारण अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के भोजन में विविधता दिखाई देती है। पहाड़ी क्षेत्रों का भोजन अलग होता है, समुद्री क्षेत्रों का अलग, रेगिस्तान क्षेत्रों का अलग और आदिवासी क्षेत्रों का अलग। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्थानीय लोग अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भोजन तैयार करते रहे हैं। यही कारण है कि पारंपरिक भोजन प्रकृति के साथ तालमेल का उदाहरण है। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक पोषण चार्ट के भी अपने अनुभवों के आधार पर यह समझ लिया था कि कौन सा भोजन किस मौसम में उपयोगी है। गर्मी में हल्का और पानी की मात्रा वाला भोजन, सर्दी में ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ और बरसात के मौसम में विशेष प्रकार की सावधानियां, ये सब हमारी पारंपरिक भोजन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। इसलिए स्थानीय भोजन को केवल पुराने समय की चीज मानकर छोड़ देना उचित नहीं है। इसके पीछे प्रकृति, अनुभव और स्थानीय ज्ञान की लंबी परंपरा जुड़ी हुई है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, हमारी दादी नानी की रसोई का महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को याद है कि जब घर में दादी या नानी कोई विशेष पकवान बनाया करती थी, कभी त्योहार पर लड्डू बनते थे अंजलि, तो कभी सर्दियों में बाजरे की रोटी बना करती थी
0: जी जी,
1: और साथ ही उसके गुड़ भी परोसा जाता था, तो कभी गर्मियों में पापड़, बड़ी और अचार तैयार किए जाते थे। उस समय श्रोता साथी रसोई में आधुनिक मशीनें कम थी, लेकिन अनुभव बहुत अधिक था।
0: बिल्कुल,
1: दादी की उंगलियों को देखकर ही पता चल जाता था कि आटा कितना गूंथना है। नानी बिना किसी माप के मसालों की मात्रा बता देती थी, अचार में नमक कितना पड़ेगा, दाल में कौन सा मसाला कब डालना है और किस मौसम में कौन सी चीज खाना बेहतर है, इन सब का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था साथियों।
0: जी जी,
1: और ये जो ज्ञान है वो किसी किताब में दर्ज नहीं था, यह ज्ञान रसोई की परंपरा में जीवित था। इसलिए जब हम किसी पारंपरिक व्यंजन को बनाते हैं तो वास्तव में हम अपने पूर्वजों से मिले विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आज के समय में बाजार में पैकेट वाले और तैयार खाद्य पदार्थों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे हो या युवा, कई लोग जल्दी तैयार होने वाले भोजन को प्राथमिकता देने लगे हैं। लेकिन इसके पीछे हमारे पारंपरिक अनाज धीरे धीरे हमारी थाली से दूर होते जा रहे हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का और अन्य स्थानीय अनाज पहले रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा हुआ करते थे।
1: जी जी।
0: आज कई घरों में इन्हें विशेष अवसरों पर ही बनाया जाता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि स्थानीय अनाज केवल खेती की उपज नहीं, इनके साथ हमारे किसानों का जीवन, हमारी खेती की परंपरा और हमारे गांवों की खाद्य संस्कृति भी जुड़ी हुई है। जब हम स्थानीय अनाजों को अपनी थाली में शामिल करते हैं तो हम अपने स्थानीय किसानों को भी प्रोत्साहन देते हैं, उन स्थानीय खेती की परंपरा को और मजबूत बनाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो हमारे त्योहार भी भोजन के बिना अधूरे लगते हैं साथियों। दिवाली पर मिठाइयाँ, होली पर पकवान, जन्माष्टमी पर विशेष प्रसाद, जैसे कई अवसरों पर पारंपरिक व्यंजन हमारे त्योहार का अपना स्वाद होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भोजन इन अवसरों को केवल स्वादिष्ट नहीं बनाता अंजलि जी, बल्कि परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने का भी कार्य करता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि पहले त्योहार पर घर की महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर कई दिनों तक तैयारियां करते थे, पापड़ बनते थे, मंगोड़ी तैयार होती थी, मसाले पिसे जाते थे और मिठाइयाँ घर पर बनती थी।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, त्योहारों में केवल कह सकते हैं कि भोजन ही नहीं बनता था, रिश्ते भी बनते थे, यादें भी बनती थी और परंपराएं भी आगे बढ़ती थी। हम कह सकते हैं अंजलि जी कि स्थानीय भोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह हमारी मिट्टी और मौसम से जुड़े हुए होते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास उपलब्ध अनाज, दाल, फल, सब्जी और मसालों का उपयोग करके भोजन की एक ऐसी परंपरा विकसित की है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल थी।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई त्योहार हो जिसके साथ कोई विशेष भोजन न जुड़ा हो। त्योहार के अवसर पर बनने वाले पकवान केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाएं भी होती थी। किसी त्योहार पर मिठाई बनाई जाती थी, किसी अवसर पर विशेष व्यंजन, तो कहीं पूजा और धार्मिक परंपराओं से जुड़े खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते थे।
1: जी हाँ।
0: शादी ब्याह के अवसरों पर भी अलग अलग समुदाय की अपनी परंपराएं भोजन पद्धतियां होती थी। किसी गांव के मेले में मिलने वाली स्थानीय भोजन उस क्षेत्र की पहचान बन जाता था। इसलिए कहा जा सकता है कि किसी समाज को समझना हो तो उसकी भाषा के साथ साथ उसके भोजन को भी समझना जरूरी है। भोजन हमें बताता है कि किस समाज के लोग किस प्रकार रहते हैं, क्या उगाते हैं, किन चीजों को महत्व देते हैं और किन परंपराओं को पीढ़ियों से संभाल कर रखते आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: दादी नानी की रसोई में छिपा ज्ञान की बात करें तो हम सभी ने अपने घर के बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि यह चीज इस मौसम में खाना अच्छा है, इस सब्जी को ऐसे बनाना चाहिए, यह व्यंजन त्योहार पर ही बनता है, यह अनाज शरीर को ताकत देता है।
1: बिल्कुल।
0: इन बातों के पीछे कशिश वर्षों का अनुभव होता है। पुराने समय में लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, पोषण विशेषज्ञ की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, फिर भी वे अपने अनुभवों और प्रकृति के अवलोकन के आधार पर भोजन से जुड़ा ज्ञान विकसित करते थे। घर की महिलाएं विशेष रूप से भोजन के संरक्षण, मसालों के उपयोग, अनाज को सुरक्षित रखने और मौसमी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उपयोग में लाने की विधियां जानती थी। आज जरूरत है कि हम इन पारंपरिक ज्ञान को सुने, समझे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि श्रोता साथियों से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बातें चली रही हैं हमारी संस्कृति को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे साथियों, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।
1: तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यही बात करी बदलती जीवन शैली और बदलती थाली को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आज हमारी जिंदगी पहले की तुलना में बहुत तेजी से बदल रही है। काम का दबाव, समय की कमी, बाजार का प्रभाव और विज्ञापनों ने हमारे भोजन की आदतों को बदल दिया है।
1: बिल्कुल।
0: अब कई लोग जल्दी खाना बनाने के चक्कर में अपनी जो पसंद की चीजें हैं उन्हें अलग तरीके से खाने लगे हैं।
1: जी जी,
0: कई लोग जल्दी बनने वाले भोजन को अधिक पसंद करते हैं। बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और हम देखते हैं कि बाहर का खाना हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। समस्या श्रोता साथियों तब होती है जब सुविधा के कारण हम अपने पारंपरिक और स्थानीय भोजन को पूरी तरह भूलने लगते हैं। आज कई बच्चों और युवाओं को अपने क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों के नाम तक पूरी तरह नहीं पता।
1: जी बिल्कुल।
0: यह नहीं पता कि उनके दादा दादी बचपन में क्या खाते थे, गाँव में कौन सी स्थानीय सब्जियां उगती थी या कौन सा भोजन किसी मौसम में बनाया जाता था। यदि यह स्थिति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियां अपनी खाद्य संस्कृति से दूर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज युवाओं और बच्चों में फास्ट फूड का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। रंगीन पैकेट, आकर्षक विज्ञापन और अलग अलग स्वाद लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन हमें बच्चों को यह भी बताना होगा कि हमारे घर का भोजन किसी भी आधुनिक भोजन से कम महत्वपूर्ण नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: घर की बनी रोटी, स्थानीय अनाज, दाल, सब्जियां और मौसमी भोजन हमारे पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा है। हमें बच्चों को केवल कशिश यह नहीं कहना चाहिए कि बाहर का खाना मत खाओ, बल्कि उन्हें स्थानीय भोजन की कहानी बतानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें बताना चाहिए कि यह अनाज हमारे गांव के खेतों में उगता है, यह सब्जी हमारे क्षेत्र में आसानी से मिलती है, यह व्यंजन हमारी दादी बनाती थी, यह पकवान हमारे त्योहार की पहचान है। जब बच्चों को भोजन के पीछे की कहानी पता चलेगी तो उनके मन में स्थानीय भोजन के प्रति अपनापन बढ़ेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि स्थानीय भोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था की ताकत है, क्योंकि स्थानीय भोजन का संबंध केवल संस्कृति से ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था से भी है। जब हम स्थानीय अनाज, मसाले, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते हैं अंजलि जी, तो हमारे आसपास के किसान, छोटे व्यापारी और स्थानीय उत्पादक लाभान्वित होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम साथियों मोटे अनाज, स्थानीय दालों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को अपनी थाली में जगह देते हैं तो इससे स्थानीय कृषि को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
0: जी जी।
1: आज पूरी दुनिया में पारंपरिक और स्थानीय खाद्य पदार्थों की रुचि बढ़ रही है। ऐसे में हमारे अपने पारंपरिक व्यंजन हमारी संस्कृति की पूंजी भी है और आर्थिक अवसर भी। अब अंजलि जी, सवाल यह है कि हम इन विरासत को कैसे बचाएंगे।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इसकी शुरुआत अपने घर से हमें करनी होगी। महीने में एक दिन परिवार मिलकर कोई पारंपरिक व्यंजन बनाए, बच्चों को उसके बारे में बताया जाए।
0: जी जी।
1: दादी नानी या परिवार के बुजुर्गों से पुराने व्यंजनों की विधि पूछकर लिखी जाए। स्थानीय अनाज और मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल किया जाए।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही स्कूल में स्थानीय भोजन और खाद्य पदार्थों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं अंजलि जी।
0: जी हाँ।
1: गाँव और शहरों में पारंपरिक व्यंजन के मेले लगाए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें अपने स्थानीय भोजन को कमतर नहीं समझना है। जिस भोजन को हमारी पिछली पीढ़ियां साधारण समझकर खाती थी, संभव है कि वही भोजन आज हमारी सबसे बड़ी संस्कृति की पहचान बन चुका है।
0: बिल्कुल कशिश, यही बात करें श्रोता साथियों से कि स्थानीय भोजन और स्थानीय किसान का क्या महत्व है। तो श्रोता साथियों, स्थानीय भोजन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध स्थानीय किसानों से भी है। जब हम अपने आसपास उगाई जाने वाली फसलों का उपयोग करते हैं तो स्थानीय बाजार और किसानों को भी समर्थन मिलता है। यदि लोग केवल बाहर से आने वाले पैकेट वाले भोजन पर निर्भर हो जाएं और स्थानीय फसलों का उपयोग कम करें तो धीरे धीरे स्थानीय खेती भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, स्थानीय भोजन को अपनाना केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं है, यह गांव की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: स्थानीय अनाज खरीदने से स्थानीय किसानों को बाजार मिलता है, पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिलता है, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और स्थानीय खाद्य परंपराएं जीवित रहती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों, हमारे समाज में भोजन संस्कृति को संभालने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घर की रसोई में भोजन तैयार करने से लेकर बच्चों को खाने की सिखाने तक महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: पारंपरिक व्यंजन ऐसे हैं कशिश जिनकी विधियां घर की महिलाओं ने पीढ़ियों तक संभाल कर रखी। कौन सा मसाला कितना डालना है, कौन सा व्यंजन किस मौसम में बनेगा, कौन सा पकवान त्योहारों पर तैयार होता है, यह ज्ञान अक्सर घर की महिलाओं के माध्यम से आगे बढ़ता रहा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज की युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच संवाद कम होने के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए परिवार में समय निकालकर पारंपरिक व्यंजनों की विधियां सीखना और बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। श्रोता साथियों, किसी संस्कृति को समझना हो तो केवल उसके स्मारकों और इतिहास की किताबों को देखना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी किसी संस्कृति को समझने के लिए अंजलि जी उसकी रसोई में झांकना भी पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: वहाँ हमें श्रोता साथियों मिट्टी के बर्तनों की कहानियां मिलेंगी, मसालों की खुशबू मिलेंगी, तो खेतों की मेहनत मिलेगी, त्योहारों की खुशी मिलेगी और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की गर्माहट भी मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: एक रोटी जो हमें किसान की मेहनत की याद दिलाएगी, एक कटोरी दाल हमें हमारी सादगी से जोड़ेगी, एक पारंपरिक मिठाई अंजलि जी हमें त्योहारों और परिवार की याद दिलाती है, और किसी पुराने व्यंजन का स्वाद हमें अपने बचपन तक ले जाता है। इसलिए हमारी थाली में परोसा गया भोजन केवल भोजन नहीं होता श्रोता साथियों, वह हमारी स्मृति है, हमारी परंपरा है और हमारी मिट्टी की खुशबू है, और सबसे बढ़कर वह हमारी पहचान है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिले जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी दोस्तों, और हम जान रहे थे कि किस प्रकार से हमारी रसोई में ही हमारी पहचान छिपी हुई होती है, और वर्तमान की भी कुछ ऐसी बातें हमने की थी जिसके कारण हम अपनी वर्तमान की जो स्थिति है उसके कारण अंजलि जी हम अपने पारंपरिक व्यंजन विधियों को और कह सकते हैं कि हमारी जो परंपरा है उसे भूलते जा रहे हैं, ये भी हम गीत से पहले जान पाए थे।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें तो श्रोता साथियों, हम सभी को मिलकर एक छोटा सा संकल्प ये लेना होगा कि हम आधुनिक भोजन का आनंद जरूर लेंगे लेकिन अपने स्थानीय भोजन को नहीं भूलेंगे।
1: जी,
0: हम अपनी नई पीढ़ी को पिज्जा और बर्गर के साथ अपनी दादी की रेसिपी भी बताएंगे अंजलि जी। हम अपने खेतों में पैदा होने वाले अनाज का सम्मान करेंगे, हम स्थानीय किसानों और उत्पादकों का समर्थन करेंगे और अपनी रसोई में छिपी उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जिस घर की रसोई में अपनी मिट्टी का स्वाद जीवित रहता है अंजलि जी, उस घर की संस्कृति भी जीवित रहती है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि भारत की खाद्य विविधता हमारी संस्कृति समृद्धि का ही प्रमाण है। राजस्थान की बाजरे की रोटी और दाल बाटी चूरमा से लेकर दक्षिण भारत में इडली डोसा तक, पंजाब के सरसों के साग से लेकर बंगाल में मछली भात तक, दोस्तों हर व्यंजन अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है।
1: जी जी,
0: आज आवश्यकता बस इस बात की है कि हम आधुनिक भोजन और वैश्विक खाद्य संस्कृति को अपनाते हुए भी अपने स्थानीय खाद्य विरासत को न भूलें, और हमें अपने घरों में भी पारंपरिक व्यंजन को स्थान देना होगा अंजलि जी।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि आप किसी दूसरे शहर या राज्य में जाए और वहाँ आपको अपने गाँव का कोई पारंपरिक व्यंजन मिल जाए, उस समय केवल स्वाद नहीं आता बल्कि उनके साथ बचपन की यादें भी जुड़ जाती हैं। हमें अपना घर याद आता है, परिवार याद आता है, त्योहार याद आते हैं, गांव की गलियां और अपने लोग याद आते हैं। यही भोजन की सबसे बड़ी ताकत है। भोजन हमारे शरीर के साथ साथ हमारी स्मृतियों को भी जोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कशिश के हमारी थाली में केवल खाना नहीं होता, उसमें हमारा इतिहास और हमारी पहचान भी होती है। अब बात आती है कि नई पीढ़ी को स्थानीय भोजन से कैसे जोड़ें, तो श्रोता साथियों यह प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों और युवाओं को पारंपरिक भोजन से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए हमें घर में पारंपरिक भोजन बनाने होंगे। सप्ताह में कुछ दिन स्थानीय और पारंपरिक व्यंजन जरूर बनाएं, उन्हें बताएं कि यह भोजन कहाँ से आया है, किस मौसम में बनाया जाता है और हमारे परिवार में इसका क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: दादी नानी और परिवार के बुजुर्ग से पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी लें, उन्हें सामान्य दिनों के भोजन में भी शामिल किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को अपने क्षेत्र के पारंपरिक खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी दी जाए। युवा पारंपरिक भोजन को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन उनके मूल स्वाद और पहचान को बनाए रखना जरूरी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्थानीय भोजन और संस्कृति को बचाने के लिए बड़े बड़े कामों की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत अपने घर से की जा सकती है। हम स्थानीय अनाज को अपनाएं, मौसमी फल और सब्जियां खाएं, पारंपरिक व्यंजन बनाना सीखें, बच्चों को स्थानीय भोजन से परिचित कराएं, गांव के बुजुर्गों से भोजन से जुड़ी जानकारी लें, स्थानीय किसानों से जुड़े और त्योहारों के साथ साथ रोजमर्रा के भोजन में भी अपनी खाद्य संस्कृति को स्थान दें। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने पारंपरिक भोजन को पिछड़ेपन की निशानी नहीं बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के रूप में देखना चाहिए। आधुनिक बनना अच्छी बात है श्रोता साथियों, लेकिन नई चीजें सीखना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया के अलग अलग भोजन का स्वाद लेना गलत नहीं है लेकिन आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को भूल जाना उचित नहीं है। अपने गाँव का भोजन, अपने क्षेत्र का अनाज, आपकी दादी की रसोई और आपके त्योहार के पकवान, ये सब आपकी सांस्कृतिक पहचान है। दुनिया को जानिए, नई चीजें अपना लेकिन अपने मिट्टी के स्वाद को कभी मत भूलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही अपनी पहचान को मजबूती से आगे बढ़ा सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही।
1: बिल्कुल,
0: और हमने जाना हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को लेकर। तो ये बातें जैसा कि हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार। साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और सुनिधि चौहान जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक आदित्य जी का साना। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। इसी भी जुड़ना चाह रहे पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और सुनिधि जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोपरगांव से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं ये अजनबी मेहया तुमको मैं जी रहा। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश मालो।

वर्षा मालोदी सेना गांव से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमान श्री राम जी और उषा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी जोगेशपुरी गोस्वामी टिंकल डिप्पल मीनाक्षी निशा और तुलसी जी गोस्वामी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वासी अब्दुल गफार डावर जी अब्दुल हक डावर जी जिया हक डावर जी भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवगाना दुर्गा प्रसाद पराग जी पूना राम और कृष्णा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नीपा नगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल है एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभिजी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनुजी खान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, कुशजी मुणत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष जी श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमे सोमो और मानस सिंह राज। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है जीत। गीत के बोल ही अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा और सार्थक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र ने ताम, गणेश्वरी ने ताम, चंचल ने ताम, कामलेश ने ताम और माहीजीर ने ताम। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, हीरामणि शेंडी और प्रतिभाजी गोड़ा ने। इस गीत के अनुरोध करता है गंजद्वारा से फिराज से हुसैन अंसार, रेहाना, फैजान, शहरत जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने सोनू जी और अलका जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कन्यादान। गीत के बोल ही, लिखे जो खत तेरी याद में। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या जी गोस्वामी और अन्नू जी गोस्वामी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है कन्यादान। गीत के बोल हैं, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छछेड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है चित चोर, गीत के बोल ही गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है। इस गीत की फरमाइश करता है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, शुभम जरिए, पवन जरिए और सजीव जी। इसी भी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सीतल कश्यप, सोनू सूरज, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह जी। यवतमाल से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल सरला, विशाल जी, चेतन जी और रोशनी जी और बेबी प्रियांशी जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रसाद जादव, सोनम जादव, बीबी सिया जादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, चंदन जी जादव, एकता जी जादव और संगीता जी जादव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है लूटमार, गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। इस गीत की फरमाइश करता है नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्मी मल्होत्रा, लड्डू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कोले ने रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, भाविका सिक्का, डुग्गू जी सिक्का। इसी बीच जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते ही फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल ही जब छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों जैसा कि आज भी ये सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। गीत के बोल है याद आ रहा है। फिल्म का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्को डांसर, और फरमाइश करता है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू देविका चौधरी जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी जी, सुधर नूतन, रामनंद कश्यप जी, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। और भी श्रोता साथी मजनू का टिल्ला से जुड़ रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। रघुवीर नगर से जुड़ना चाह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, इलियाज नायब और लड्डू जी। मालवा रतलाम MP से जुड़ना चाह रहे हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है याद आ रहा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था डिस्को डांसर फिल्म का, याद आ रहा है तेरा प्यार। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है फागुन, गीत के बोल हैं एक परदेसी मेरा दिल ले गया। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में बिहार मधुबनी से MD शबीर परवाना, शाहिद अली जी, जाहिद अली जी और साजिद अली जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हमारे दोस्त और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। यवतमाल से हैं निशा रारी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरावर पिताजी। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शांत साहू, सीमा साहू। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे जी, पैम प्रसिद्धि जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं एक परदेसी मेरा दिल ले गया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था एक परदेसी मेरा दिल ले गया, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से आई है। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया, गीत के बोल हैं हवा हवाई। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जी और ईशान छिपा जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। दादरी गेट भिवानी से है कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, और भी हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नवाशहर पंजाब से गगन दीप थांडी, रीता कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, वामिका वाणी थांडी जी, और भी हमारे दोस्त हैं। अनुरोध करता जुड़ रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेशमा सुरे, पदी शुरू से, मायरा शुरू से जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हवा हवाई। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है चोकलंटी बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोल हैं मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी। इस गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी ने और फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मोहम्मद सिद्दबासी, निगत प्रवीणाबल, शहनवाजी, सरफराज फरदान सरदीन और सुहान अर्जन अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य गण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं बत्ता परियार मोहल्ला पटियाला से, मुकेश भाटी, नीलम बत्ता, नितिन पलक, रगन गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता जी। और भी अनुरोध करता जुड़ना चाह रहे हैं रंजोनी महूबा बुलंदगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, उदयन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त पाल परिवार सदस्यगण। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा जी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बुलबुलैया, गीत के बोल है मेरे ढोल ना सुन। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, धनोरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्त हमारे बीरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयशी मेतेरे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी। पंजाब से जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव जी। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत की बोल है मेरे ढोल ना सुन। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, करंजी रोड से आया है ये फरमाइश का गीत। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम, गीत के बोल है धूम ताना। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मंजू लोखंडे जी, रामहरी लोखंडे, सूरज लोखंडे जी। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और भी हमारे दोस्त हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फलमान इरमान, इरफान जी, इसराज नरगिस खातून जी, मोहम्मद फरमान सलमान जी। सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी केस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं धूम ताना तनन तनन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कभी खुशी कभी गम। गीत के बोल हैं बोले चूड़िया बोले कंगना। महाराष्ट्र से ये फरमाइश आई है। फरमाइश करता जुड़ रहे रुपये संगे मैस प्रिगेस प्रीतेश संगे पूरा संगे परिवार। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी आकोट महाराष्ट्र से हैं नितिन पाटिल नलिनी पाटिल जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पुनंग गगनेजा विशाल प्रिया जिशानी निमित आहूजा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा प्रकाश मल्होत्रा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में जो नाम बताना चाहूंगी दोस्तों आप सभी को मगल रोड छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन मोहित कुमार चंदन देवी करानी चंदन गजेंद्र कुमार चंदन हेयांश कुमार चंदन।

जोशी, वेदई, अंशिका जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, हर्षविंदर सिंह चावला, मनीष चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरे बिना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आपको बताना चाहूँगी साथियों कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वाग रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:33 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा मीठा शहद था उसका, परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैलगाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है, इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हम या आपने ने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपने हाल हम ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने अपने धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, संबंध भी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी है।
0: जी हाँ
1: साथियों, कहा जाता है कि इंसान अकेले नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और रिश्तों के बीच रहकर बनता है। हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारी मेहनत और हमारी प्रतिभा निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व को निखारती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमारे संबंध और व्यवहार ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं या नहीं। आज का युवा पढ़ाई करता है, करियर बनाने में सपने देखता है, नई तकनीक सीखता है, कशिश अपने लक्ष्य भी निर्धारित करता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इन सब के साथ एक सवाल भी बहुत जरूरी है कि क्या हम अच्छे संबंध बनाना और उन्हें निभाना भी सीख रहे हैं?
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जीवन में सफलता केवल ये नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुँचे, बल्कि ये भी है कि उस ऊंचाई तक पहुँचते हुए हमने कितने लोगों का सम्मान किया।
0: जी हाँ।
1: कितने रिश्तों को संभाला और कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ा।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ पहले हम दोस्तों को मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना शुरुआत पहले गीत के साथ हम करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारे संबंध भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर बात करें जागृति जी, तो संबंध सबसे पहले व्यक्तित्व का पाठ ही सिखाते हैं। वो कैसे श्रोता साथियों? तो हमारा व्यक्तित्व केवल हमारे कपड़ों, बोलने के तरीके या आत्मविश्वास से नहीं बनता। व्यक्तित्व में हमारी सोच, हमारा व्यवहार, भावनाएं, निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों के प्रति सम्मान और कठिन परिस्थितियों में हमारा रवैया कैसा होता है, ये भी शामिल होता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इन गुणों को सीखने की पहली जगह अक्सर हमारा परिवार ही होता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य जो हैं, वो हमें सिखाते हैं कि सम्मान क्या है, जिम्मेदारी क्या होती है, सहयोग कैसे करना होता है और किसी के साथ खड़े रहना क्या होता है। जागृति जी, जब कोई युवा अपने परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुनता है और उनकी भावनाओं को समझता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है, तो उसके अंदर संवेदनशीलता के साथ साथ जिम्मेदारी जैसे गुण भी विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यही छोटे छोटे गुण जो होते हैं, वो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान बनते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन में दोस्तों का प्रभाव तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्त हमारे विचारों, हमारी आदतें, निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए दोस्त चुनते समय केवल ये देखना जरूरी नहीं कि कौन हमारे साथ मौज मस्ती करता है, बल्कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल।
1: एक अच्छा दोस्त वो नहीं श्रोता साथियों जो हर बात में हमारी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि अच्छा दोस्त तो वो है जो जरूरत पड़ने पर हमें सही बात समझाए, हमारी गलती बताए और हमारे सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक सकारात्मक संगति युवा के अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग और सकारात्मक सोच विकसित कर सकती है कशिश।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कहा जा सकता है कि जैसी संगति वैसी सोच और जैसी सोच वैसा व्यक्तित्व।
0: जी हाँ जागृति जी, आज श्रोता साथियों हमारे पास संवाद करने के ढेर सारे साधन हैं।
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, इन सभी ने हमारी दूरी को कई हद तक कम कर दिया है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे बीच संवाद बड़ा है साथियों? ये सोचने वाला प्रश्न है। कई बार हम घंटों ऑनलाइन रहते हैं जागृति जी, लेकिन अपने ही परिवार के किसी सदस्य से कुछ मिनट खुलकर बात नहीं कर पाते।
1: जी हाँ
0: साथियों, सच्चा संबंध केवल मैसेज या इमोजी से नहीं बनता। उसके लिए जरूरी है सुनना, समझना और अपनी बात सही तरीके से रखना।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में युवाओं के व्यक्तित्व में संवाद कौशल की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम अपनी बात शांतिपूर्वक रखते हैं जागृति जी, दूसरों की बात बीच में काटे बिना सुनते हैं और असहमति होने पर भी सम्मान बनाए रखते हैं साथियों, तो हमारा व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली बनता है। इसलिए आप हमेशा ये बात याद रखिए कि अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, जैसा कि आपने बताया कि संवाद मजबूत संबंधों की नींव है। यही अगर बात करें कि मतभेद होना गलत नहीं, रिश्ते तोड़ देना गलत हो सकता है, इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो श्रोताओं, हर संबंध में विचारों की समानता संभव नहीं है।
0: जी हाँ,
1: परिवार में, दोस्तों के बीच में, कॉलेज में या कार्यस्थल पर हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं होता है। परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान यही कि हम अपनी बात पर कायम रहते हुए दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें।
0: जी हाँ,
1: कई बार छोटी सी गलतफहमी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। ऐसे समय में अहंकार से नहीं, संवाद से समाधान निकालना होगा।
0: बिल्कुल।
1: मैं सही हूँ साबित करने से ज्यादा जरूरी है हमारा संबंध सही रहे, ये सोचना जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि ये तो आपने हमारे युवा साथियों को बताया, मतभेद होना गलत नहीं है लेकिन रिश्ते तोड़ देना गलत हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: तो इसी विषय को लेकर आगे भी कार्यक्रम में और बातें होंगी। हम जानेंगे कि अच्छे संबंध हमारे युवा साथियों के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो बातें और भी करेंगे युवा साथियों, लेकिन अभी आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं यह गीत।

0: इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी कि संबंध भी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने संबंध, हमें सबसे पहला व्यक्तित्व पाठ सिखाते हैं इसको जाना था, साथ ही हमने दोस्ती भी व्यक्तित्व को आकार देती है इसके बारे में जाना था, संवाद मजबूत संबंधों की नींव है ये भी जाना था, और मतभेद होना गलत नहीं, रिश्ते तोड़ देना गलत हो सकता है ये भी हमने जाना था।
1: जी बिल्कुल,
0: यही जानते हैं अच्छे संबंध आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यानी कि कशिश, जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी मेहनत की सराहना करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी एक छोटा सा वाक्य तुम कर सकते हो किसी युवा को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। इसी तरह श्रोताओं, हमें भी अपने दोस्तों और आसपास के युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उसकी सराहना करना होगा, क्योंकि दूसरों को ऊपर उठाने से हमारा व्यक्तित्व छोटा नहीं होता बल्कि और बड़ा हो जाता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ युवा साथियों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे संबंध केवल परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं होने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हमारे जो संबंध होते हैं वो हमारे आसपास के पूरे समाज से भी जुड़े होते हैं। हम पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं, बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं, छोटे बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, सहकर्मियों के साथ हम कैसे पेश आते हैं, ये सभी बातें जागृति जी हमारे युवा साथियों के व्यक्तित्व को दर्शाती है। एक युवा जब अपने समुदाय की समस्याओं को समझता है, जरूरतमंद की मदद करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो उसमें नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित होती है। यहीं से दोस्तों युवा आगे चलकर समाज का जिम्मेदार नागरिक बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने संबंधों को एक नया रूप दिया है। हमारे पास सैकड़ों ऑनलाइन कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी वास्तविक संबंध हो।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये समझना होगा कि फॉलोअर्स की संख्या और सच्चे संबंधों की संख्या एक जैसी चीज नहीं है। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर अपने जीवन की तुलना करना भी सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसकी वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने, सकारात्मक विचार साझा करने और लोगों से जुड़ने के लिए करें, और सबसे जरूरी बात है कि ऑनलाइन बातचीत में भी वही सम्मान रखें जो हम आमने सामने बातचीत में रखते हैं।
1: बिल्कुल साथी दोस्तों, संबंध बदलते हैं और हमें सिखाते भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि जीवन में हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है जागृति जी। कोई हमें धैर्य सिखाता है, तो कोई मेहनत करना सिखाता है, कोई हमें अपनी गलतियों से सीखना भी सिखाता है श्रोता साथी, तो कोई हमें माफ करना सिखाता है। कभी कभी कोई संबंध हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन वह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक जरूर दे जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हर संबंध से केवल एक अपेक्षा न करें, मुझे इससे क्या मिलेगा, कभी ये भी सोचे साथियों कि मैं इस संबंध में क्या अच्छा दे सकता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: और जागृति जी यही सोच हमारे युवा साथियों के व्यक्तित्व को अधिक संवेदनशील और परिपक्व बनाएगी।
0: जी हाँ कशिश, और हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमारे दिल में उतारनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि हम हर बातचीत में केवल अपनी बात रखने के बजाय सामने वाले की बात को भी सुननी होगी। उम्र, पद या परिस्थिति चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आना है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहे जो आपको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाए। माफी मांगना कमजोरी नहीं है श्रोताओं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है।
1: बिल्कुल,
0: व्यस्त जिंदगी में भी परिवार, दोस्त और समाज के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: जी हाँ,
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि व्यक्तित्व केवल हमारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और संबंध से भी पहचानी जाती है। हम कितना अच्छा बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम कितने सफल हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारी सफलता में हमारे साथ खड़े लोगों के प्रति हमारा सम्मान बना रहे। इसीलिए अपने सपनों के साथ साथ अपने संबंधों को भी समय दीजिए, अपनों को सुनिए, दोस्तों को समझिए, मतभेदों को संवाद से सुलझाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मजबूत रिश्ते हमें सहारा देते हैं, अच्छे संबंध हमें संस्कार देते हैं और सकारात्मक संबंध हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों कहना चाहेंगे कि जीवन की असली खूबसूरती केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि अच्छे संबंध बनाने और उन्हें सम्मान के साथ निभाने में भी है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका व्यक्तित्व आपकी बातों से कम और आपके व्यवहार, संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति सम्मान से ज्यादा पहचाना जाता है। इसलिए युवा साथियों, अपने परिवार को आप समय दें, सच्चे मित्रों की कदर करें, मतभेदों को संवाद से सुलझाएं और जरूरत पड़ने पर दूसरों का हाथ थामने से पीछे न हटें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी अच्छे संबंध हमें केवल खुशी नहीं देते, वे हमें एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। दोस्तों रिश्तों को समय दीजिए, लोगों का सम्मान कीजिए और अपने व्यवहार में इंसानियत को रखिए। आपको बताना चाहेंगे कि यही एक सुंदर व्यक्तित्व की सच्ची पहचान होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए संबंध को संवारिए, व्यक्तित्व को निखारिए और समाज को बेहतर बनाने में अपना

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

बहनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर। हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कुपोषण को लेकर, और यह जो विषय है वो हमारे बच्चों के वर्तमान ही नहीं बल्कि उनके पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। बच्चे हमारे परिवार और समाज की सबसे अनमोल धरोहर हैं। उनका स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और खुशहाल बचपन हर माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी, समय पर सही भोजन न मिलना, बार बार बीमार होना या बच्चों के विकास पर ध्यान न देना जैसी वजहों से बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। कई माता पिता यह समझ नहीं पाते कि बच्चा

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कुपोषण क्या है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, किन बच्चों को इसका खतरा ज्यादा होता है और साथ ही माता पिता अपने बच्चों को कुपोषण से कैसे बचा सकते हैं। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है राधा जी, जो कि महिला पर्यवेक्षक हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह मनाते हैं, तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि कुपोषण क्या है और इसकी पहचान हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि कुपोषण क्या होता है और ये बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, पोषण माह के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि कुपोषण क्या है, कुपोषण का सीधा सा अर्थ होता है कि जरूरत के अनुसार बच्चे के पोषक जो तत्व हैं उनका नहा होना, यानी कि जैसे प्रोटीन है, विटामिन से, मिनरल्स से, उनकी कमी होना, जिससे बच्चा अल्प पोषण होता है और उसके खान पान की जो जरूरत होती है उनके तत्वों में उनका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका जो असर है उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और उसके विकास पर भी पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे उसके शरीर का कमजोर पड़ जाना, अंगों के विकास का रुक जाना, या जल्दी जल्दी जैसे बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो ये जो हमें असर नजर आते हैं वो बच्चे के स्वास्थ्य पर नजर आते हैं। और अगर हम विकास की बात करें तो कुपोषण के कारण बच्चे की जो लंबाई है अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती है और उसका मानसिक और बौद्धिक विकास भी धीमा हो जाता है, जिससे सीखने की क्षमता पर उसका बुरा असर पड़ता है और उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यहीं अब मैं जानना चाहूंगी कि कुपोषण की शुरुआत में बच्चे के शरीर या व्यवहार में कौन कौन से ऐसे संकेत हमें दिखाई देते हैं जिन्हें माता पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उसमें माता पिता को विशेष ध्यान देना होगा बच्चे की ओर, जैसे कि उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है बच्चे के, जैसे कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बच्चा बिना किसी वजह के लगातार चिड़चिड़ापन कर रहा है, बहुत ज्यादा रोता है या एकदम से सुस्त रहता है, ये उसके व्यवहार में बदलाव लाता है। फिर उसकी कमजोरी की तरफ देखें, जैसे खेलने कूदने में उसकी रुचि कम होती है और बहुत जल्दी वो थक जाता है, तो उसकी कमजोरी का एक संकेत है।
0: बिल्कुल।
1: फिर एक उसका शारीरिक संकेत है, जैसे उसकी स्किन है वो सूखी या बेजान सी हो जाती है, ठीक है, और उसके जो बालों का जो कलर है वो बदलता हुआ नजर आने लगता है या बाल उसके झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बनने हुए होते हैं और उसके जो पैर होते हैं पैरों में सूजन आ जाती है, और उसकी उम्र के अनुसार उसका वजन कम होता है, पतला दुबला होता है और उसके शरीर की हड्डियां दिखने लग जाती हैं, और भूख की कमी होती है। जैसे सामान्य बच्चे जो भोजन खा रहे होते हैं तो उसकी तुलना में जो कुपोषण बच्चे होते हैं वो खाना कम खा पाते हैं। तो ये सारे ही जो बदलाव है उसके व्यवहार को लेकर, कमजोरी, शारीरिक संकेत और भूख की कमी, तो इन चीजों को माता पिताओं को अपने ध्यान में लाना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बात कही है। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि किन उम्र के बच्चों या किन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों में कुपोषण का खतरा अधिक होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि कुपोषण में हम उम्र की बात करें तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। ये बच्चे उस समय दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की जरूरत उन्हें पड़ती है, ऊपरी आहार सही मात्रा में सही समय पर शुरू करना चाहिए हमें, और अगर शुरू नहीं कर पाते हैं तो बच्चा कुपोषित का शिकार हो जाता है।
0: जी जी।
1: और अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां जैसे हो सकती हैं, जैसे गरीब है या आर्थिक तंगी से सूझ रहे हो, परिवार के बच्चे, वहाँ साफ सफाई की कमी हो, दूषित पानी की समस्या हो, या बच्चे बार बार दस्त या इन्फेक्शन का शिकार होते हो, जिनके माताओं को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिला, जिससे बच्चे के जन्म के समय वह बच्चा कमजोर या कुपोषित जन्म लेते हैं, तो ये उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किन परिस्थितियों में बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कई माता पिता घर पर ही बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, वे घर पर किन बातों पर ध्यान

0: लेकर यह समझ सकते हैं कि बच्चे के पोषण और विकास की जांच करवाने की जरूरत है?
1: हाँ बिल्कुल, जब माता पिता को घर में जब हमारे बच्चे हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि हमें डॉक्टर के पास कब ले जाना है, तो माता पिता ये ध्यान में लाएं कि बच्चों के जो कपड़े और जूते हैं उनका जो नाप है वो नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े छोटे होते हैं, जूते छोटे पड़ जाते हैं। अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उसके जूते और कपड़ों का नाप है वो छोटा पड़ जाएगा। अगर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो उसके कपड़े और जूतों का जो नाप है वो एज इट इज रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: वजन का नहीं बढ़ना, जैसे कि हर महीने जब हम बच्चे का वजन ले रहे हैं तो बच्चे का जो वजन है वो उसका सामान्य तौर पर लगातार 3 माह तक उसका वजन सामान्य आ रहा है, यानी कि वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ये भी एक हमारे लिए संकेत है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स वह कहीं ना किसी प्रकार से कुपोषित का शिकार हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: गतिविधियों को लेकर जब हम बात करें तो बच्चा जैसे दूसरों की तुलना में वो अपनी जो एक्टिवनेस है यानी वो कम रखता है। कुछ बच्चे फुर्तीले होते हैं जो सामान्य होते हैं, और जो कुपोषित के शिकार होते हैं वो सामान्य की तुलना में कम फुर्तीले होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, चल फिर नहीं पाते हैं, और खान व खान पीने में भी वो अपनी कमी महसूस रखते हैं। तो इस तरह से जब हम हमारे बच्चों में इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। लेकिन हम अब देखते हैं कि अक्सर परिवारों में ये माना जाता है कि जो बच्चा दुबला या कम वजन वाला है वह कुपोषित है। क्या कम वजन होना हमेशा कुपोषण का संकेत होता है या इसके लिए दूसरी बातों का भी हमें ध्यान देने की जरूरत है?
1: जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ कम वजन होना ही कुपोषण का एकमात्र पैमाना नहीं है। कुछ बच्चे अनुवांशिक कारणों से भी दुबले हो सकते हैं लेकिन वे पूरी तरह से फुर्तीले और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के में कुपोषण को समझने के लिए वजन के साथ साथ हमें दूसरी और भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि क्या बच्चा उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ रही है, क्या बच्चा एक्टिव है, क्या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है।
0: बिल्कुल।
1: क्या बच्चे की जो बाहों की गोलाई है वो क्या सामान्य, जब हम नाप रहे हैं तो वो क्या सामान्य है या नहीं, तो इस तरह की चीजों को और भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बाह की गोलाई को हम नाप रहे हैं उसका जो मापन है इसमें सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित इस तरह की कैटेगरी आती है, तो उस कैटेगरी के नाप के माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि बच्चा हमारा किस श्रेणी में है। जैसे कि वजन को लेकर जब हम बात करते हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर, महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें एक ग्रोथ मॉनिटरिंग का एक पार्ट है जिसमें हर माह बच्चे का वजन लिया जाता है। बच्चे के वजन के साथ साथ उसकी ऊंचाई देखी जाती है और उसके पोषण के स्तर का भी ध्यान रखा जाता है।
0: जी जी।
1: उसके वजन और उसके पोषण दोनों का ध्यान रखते हुए उस बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग का प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें बता रही हैं कि किस तरीके से दुबला पतला बच्चा ही या कम वजन वाला बच्चा ही कुपोषित हो, ऐसा नहीं होता है। हमें बच्चों के संकेतों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होती है। यहीं मैम हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार बीमार पड़ने और बच्चों के पोषण के बीच क्या संबंध है? क्या कमजोर पोषण से बच्चे की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि कमजोर सीधे और तौर पर बच्चे बीमार के लड़ने की क्षमता यानी कि उसकी इम्यूनिटी को घटा देता है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे के शरीर में पोषण नहीं होता है, वो वायरस और बैक्टीरिया उस पर आसानी से हमला कर देते हैं। जब बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है जैसे उसको दस्त है, निमोनिया है, इस तरह से अगर बार बार वो संकेत नजर आ रहे तो उसका शरीर भोजन से जो पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता है जिससे वह ज्यादा कुपोषित हो जाता है। इसलिए अच्छा पोषण ही बीमारी से बचने के लिए सबसे मजबूत ढाल साबित होती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कुपोषण की स्थिति में कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर माता पिता को घर पर इंतजार नहीं करना है बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।
1: जैसे कि जो बच्चे कुपोषण के शिकार है उनको हमें डॉक्टर के पास ले जाना है, तो उससे पहले हम हमारे ही आसपास हमारे जो माहौल है उसको हम देख पाए, जैसे हमारा वातावरण कैसा है, कहीं दूषित वातावरण तो नहीं है जिससे बच्चे शिकार हो पा रहा है। बच्चे के पैरों में जो सूजन आ जाती है क्या वो सूजन तो नहीं है, क्या वो गंभीर कुपोषण का संकेत तो नहीं कर पा रहा है, क्या बच्चा अचानक बहुत ज्यादा उसकी चमड़ी जो उसकी स्किन है वो पतली हो रही है और हड्डियां नजर आ रही है, अत्यधिक दुबलापन नजर आता है, वो कुपोषण का शिकार होता है। जब बच्चे में खाने में कमी आती है और माँ का जो दूध है वो पूरी तरह से नहीं पी पाता है, वो असमर्थ रहता है, मतलब जैसे उसको भूख लगनी चाहिए बार बार वो भूख नहीं लग पाती है और वो थोड़ा सा असहज रहता है, माँ के दूध के प्रति लगातार उस बच्चे में बीमारी के संकेत देख सकते हैं, जैसे कि उसको बार बार बुखार आ रहा है, कभी उल्टी दस्त हो रहे हैं, बच्चा कभी बेहोश हो जाता है या सुस्त पड़ा रहता है। तो इस तरह के जो संकेत हमें हमारे घर में जो बच्चे के नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए हमें तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र परिवारों तक पोषण संबंधी जो सेवा है वो पहुंचाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो कुपोषण की पहचान, निगरानी और बचाव में आंगनबाड़ी केंद्र परिवार की किस तरह मदद करते हैं?
1: बिल्कुल, जैसा कि हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जो भौतिक रूप से जो नींव है वो आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो हमारे लाभार्थी हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, धात्री महिलाएं भी होती हैं, और 0 से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, और 6 माह से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चों की निगरानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जाती है। और अभी जैसे हमने बात की कि हम राष्ट्रीय पोषण माह मनाने जा रहे हैं, तो अभी जो पोषण माह है वो 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है 2026, जिसकी मुख्य थीम हमारी है कि हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसलिए कि हमारे जो गांव में, हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनकी पूरी तरह की जो जिम्मेदारी है वो आंगनवाड़ी केंद्र ने ले रखी है। वहां पे जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं उन बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेवाएं दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत निगरानी है, पूरक पोषण है, रेफर सेवाएं हैं, ECCE है, परामर्श जांच है, MCHN डे है, इस तरह की सेवाएं आंगनवाड़ी पर उपलब्ध है।
0: बिल्कुल।
1: और जब मैं आंगनवाड़ी निगरानी की बात करूं तो बच्चों के जो कुपोषित की हम बात कर रहे हैं उसमें निगरानी के अंदर हम बच्चों के लंबाई और वजन को नापा जाता है और उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग पर नजर रखी जाती है। हर महीने वजन लिया जाता है, उसके वजन की बढ़ोतरी या कमी को इंडिकेट करके, उसे इंकित करके जो विभाग के पोषण ट्रैकर ऐप चलता है उसके अंदर उसको दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के उपरांत तो उसमें बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि बच्चा किस श्रेणी के अंदर आ रहा है, वो सामान्य है, कुपोषित है या अति कुपोषित है। अगर वो कुपोषित के अंदर आ रहा है तो उस बच्चे की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण के रूप में उन्हें THR है, गर्म भोजन है, नाश्ता है, इस तरह की जो फूड जो प्रोवाइड कराया जाता है वो बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और जब बच्चा अति गंभीर कुपोषित में आता है तो उन बच्चों को अपनी जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से NM और आशा के माध्यम से उस बच्चे की चिन्ह को इंगित करके उसे MT से रेफर किया जाता है, ताकि वहाँ पे उस बच्चे की सही से ठीक ठाक से उसकी ऊपरी आहार के माध्यम से उसकी सही डाइट और उसको सही दवाई प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि वो बच्चा ठीक हो सके।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो किस तरीके से परिवार की इन सारी चीजों में मदद करता है, यही हम देखते हैं कि सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। तो किस तरीके से और कहां उन्हें संपर्क करने की जरूरत है और क्या प्रक्रिया होती है?
1: बिल्कुल, सरकारी योजनाओं में जब मैं बात करूं तो महिला एवं बाल विकास विभाग उसके अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, दूध योजना, न्यूट्री किट योजना, इस तरह की कई योजनाएं हैं जो हमारे विभाग के द्वारा दी जाती है जो महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले तो हम फील्ड में ये मैसेज करना है कि जितने भी हमारे लाभार्थी हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: रजिस्ट्रेशन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर एक ऐप चलता है, उस ऐप के माध्यम से लाभार्थी को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्हें उनकी बैंक डायरी, आधार और ममता कार्ड, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से उनकी EKYC और FRS के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिए जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ वो DBT के माध्यम से उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि योजनाओं का लाभ और प्रक्रिया क्या रहती है और कैसे जो माता पिता है वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, यही हम देखते हैं कि बहुत सी बार अगर बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो माता पिता घबरा जाते हैं, तो क्या उचित देखभाल के माध्यम से बच्चा पूरी तरीके से फिर से स्वस्थ हो सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, कुपोषण कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यदि सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए उचित खान पान, प्यार भरी देखभाल और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ, सामान्य और ऊर्जावान हो सकता है। सरकार के एनटीसी रेफर से बच्चों को मुफ्त में इलाज करके, विशेष डाइट देकर बच्चे को कुपोषण से सामान्य की ओर लाया जा सकता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कुपोषण को लेकर हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे जो श्रोता साथी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, पोषण को लेकर मैं संदेश देना चाहूंगी कि बच्चे का पोषण देश का रोशन भविष्य है। बच्चे जीवन के शुरुआती 1000 दिन यानी कि गर्भावस्था के 9 महीने और जन्म के 2 वर्ष तक सबसे महत्वपूर्ण समय काल होता है। इस दौरान उसके देखभाल, खान पान, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जीवन भर की बीमारियों से बचाता है। लड़के और लड़कियों के पोषण में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जागरूक बनना चाहिए, समय पर बच्चों के टीकाकरण करवाना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर हमें एक स्वस्थ बच्चे की, एक खुशहाल परिवार और मजबूत देश की नींव रखनी है।
0: बिल्कुल मैम, तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: श्रोता साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण बातचीत से हमने जाना कि कुपोषण को समय पर पहचानना और सही कदम उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों का कम वजन, कमजोरी, विकास में कमी या बार बार बीमार पड़ना ऐसे संकेत हो सकते हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर नियमित नजर रखें, उनके भोजन में विविधता और पोषण पर ध्यान रखें और समय समय पर उनकी जाँच करवाते रहें। याद रखिए, स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। यदि आपको अपने बच्चे के विकास या पोषण को लेकर कोई चिंता हो तो आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता, एएनएम दीदी या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे रेडियो पर भी उन सवालों को ईमेल आईडी के माध्यम से मेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम विशेषज्ञ के माध्यम से जानेंगे और आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको अंत में कहना चाहूंगी कि बच्चे के स्वास्थ्य में छोटा सा बदलाव भी कभी कभी बड़े संकेत की ओर इशारा कर सकता है, इसलिए समय पर पहचान, सही पोषण और उचित सलाह बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: અંજલિબોન, ગીત તો આવી ગયું પૂરું, અને ગીતને બાદ એક વખત ફેરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું સ્વાગત કરા હા આપણા આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. ને જેમ કે ગીત કે પહેલે આપે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતે કરવા આ રહા કે આપણે જે ગાયનું બછડું રહે એનું પોષણ આપણે હરતે વધાવી શકા
1: હવે. તો જાગૃતિપૂર્ણ અણા વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં શ્રીમાન પ્રમોદજી રોકડિયા સાહેબ આવ્યા હતા કહે. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે
0: હોવે. સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગર રેડિયો પરિવાર મેં.
2: સભી કિસાન ભાઈઓ સભી આપકો બહોત બહોત નમસ્કાર.
0: સર જૈસા કે આપ જબ ભી હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડતે હૈ તો આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી દેતે હૈ. પર હમ દેખતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ખેતી કે સાથ પશુપાલન ભી કરતે હૈ. અગર વો પશુપાલન મેં ગાય કે મહત્વ કો સમજે તો વો ઉનકે લિયે ઓર જ્યાદા ફાયદેમંદ હોતા હૈ. પર ગાય કે મહત્વ કે સાથ હમ યે ભી દેખતે હૈ કે ગાય કે જો બછડા ઓર બછડી હોતે હૈ ઉનકા પાલન પોષણ કરના ભી હમારે લિયે બહોત અચ્છા હોતા હૈ. તો આજ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે હમ સબસે પહેલે તો ગાય કે જો બછડા બછડી હોતે હૈ ઉનકે મહત્વ કો જાનેંગે, સાથ હી ઉનકા પોષણ કૈસે બઢાએ વો ભી આજ હમ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે આપસે જાનના ચાહેંગે.
2: કિસાન ભાઈઓ, જૈસા કે અપન બછડે કે ઓર ગાય કે જો બછડે હૈ બછડી હૈ इसके पोषण के लिए और उसको पालन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं.
0: जी हाँ,
2: अपन अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनका ज्यादा रुझान नए गायों को खरीदने में हो जाता है, बनिस्पत की जो अपनी बछड़ी है उसको अच्छे से पोषण देकर उसको अच्छी दुधारू बनाने के बजाय में. तो क्योंकि क्या होता है कि अपना जो गाय है अपने पास में और जो उसकी बछड़ी हुई है
0: जी,
2: तो अगर उसके हम अच्छा पोषण देंगे तो उससे दूध की मात्रा बढ़ जाएगी अच्छी खासी. जबकि अगर हम नई गाय खरीद के लाते हैं तो उसमें कई सारी बीमारियां आने की भी समस्या रहती है.
0: हाँ,
2: जैसे थनेला रोग है. अब जहां से भी हम गाय नई गाय लाए तो हो सकता है उसमें कोई गाय में बीमारी वगैरह हो. जबकि हमारे जो गाय की जो बछड़ी है तो उसमें क्योंकि हम अच्छे से जब गाय की बछड़ी का हम प्रजनन भी कराएंगे तो अच्छे सांड से कराएंगे तो हमारा जो गाय है जो हमारे पास अच्छी प्रजाति की है उन्नत नस्ल की है तो वो क्या है उसमें हमारी बछड़ी भी अच्छी होगी. और अक्सर अपन देखते हैं कि बछड़ी का हम जो पालन पोषण करने में थोड़ी सी कमी कर जाते हैं कंजूसी कर जाते हैं तो उससे जो क्योंकि उसमें भी आगे जाके उसमें अच्छा दूधारू बनने की संभावना होती है.
0: जी हाँ.
2: लेकिन शुरू में अगर हम कमजोरी रख देते हैं तो उसमें दूध की जो मात्रा है वो कम पड़ जाती है. तो हमारे नए गायों के खरीदने की वजह हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बछड़े बछड़ी हैं इसका अगर पोषण हम अच्छे तरीके से करें तो हमारा दूध की मात्रा बढ़ सकती है.
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा. क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो भी पुराने पशु होते हैं उनकी हम ढंग से देखभाल नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनका जो दूध उत्पादन होता है वो कम हो जाता है. तो अगर हम ये सोचे कि हम कुछ पैसे और डालकर अच्छा नया पशु लेकर आए तो अगर उसका भी हम थोड़े दिनों बाद लालन पोषण ढंग से नहीं कर पाएंगे तो उसकी भी स्थिति वही हो जाएगी जो पहले वाले पशु की हुई थी. तो इसलिए हम क्यों ना ये करें कि हमारे पास जो पशु है उसी का ही हम अच्छे से लालन पोषण करें जिससे उसका जो दूध उत्पादन है वो सही मात्रा में हमें मिल पाए.
2: बिल्कुल. जैसे और अपन इसके लिए जैसे जब भी जब गाय जब जिसका बच्चा पैदा हुआ है बच्ची पैदा हुई है तो उसका जो दूध है जो अपन मानते हैं कि सबसे उसमें ज्यादा पोषण होता है.
0: जी हाँ.
2: तो अक्सर उसको पूरा देना चाहिए, पूरा खिलाना चाहिए. उसका जो कोलेस्ट्रॉल उसको कहलाते हैं अपन या उसको खीर से जो कहलाता है जो नया दूध है. क्योंकि जो गाय है उस समय जो गाय का जो पहला दूध होता है उसमें ग्रंथियों में भी नया दूध आता है.
0: जी हाँ.
2: तो उसमें ऐसी एंटीबायोटिक वगैरह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा होती है तो उसको पिलाना पूरा पूरा बछड़ी का उसका अधिकार होता है, उसको बछड़ी को पिलाना चाहिए. उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है जो सामान्य दूध के मुकाबले में बहुत ज्यादा, लगभग 14.5% तक प्रोटीन होता है. उसमें मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं. वो पूरी तरह से एक उच्च पोषण युक्त जो उसका आहार है बछड़ी के लिए तो वो होता है. हम कई बार क्या है ये अच्छी तरह से पूरा से उसको दूध को पैर रखते नहीं है तो उसको दूध पे है उसमें शुरू में 2 घंटे का बछड़ा हुआ तो उसके बाद से उसको दूध पिलाना शुरू हो जाता है.
0: जी हाँ.
2: और उसको दूध के बार बार उसको 5-5 घंटे में उसको दूध पिलाते रहना चाहिए ताकि उसका उसको बिल्कुल भी ये भूख का एहसास ना हो बछड़े को. और क्योंकि वो दूध जो है वो ही उसके लिए पोषण का एक बहुत बड़ा जो उसका
0: स्त्रोत
2: है. तो उसको अगर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है. तो उसमें काफी सारे जैसे ऐसे एंटीबायोटिक भी होते हैं कि जो आगे भविष्य में गाय को अगर जो बछड़ा गाय बनेगा और उसको बीमारी से लड़ने की ताकत भी उस दूध में होती है. तो अगर वो दूध मिल जाता है तो हम शुरू में उसको एंटीबायोटिक दे दिया यही समझो.
0: जी बिल्कुल.
2: तो इसलिए वो सबसे पहली आवश्यकता होती है. हालांकि हमारे से पशुपालक समझते भी इसको.
0: जी
2: लेकिन हाँ. वो क्या है कि अपने खुद के खाने के लिए क्योंकि वो उसमें लालच आता है कि साहब ये इसमें काफी अच्छा फायदा वाली चीज है, प्रोटीन ज्यादा है तो हमारे घर के लिए खाने के लिए रख लेते हैं।
0: हाँ।
2: लेकिन उसमें पहला अधिकार बछड़े का है, और हमें तो क्या, तो हमारा पहला ही उद्देश्य है कि हम नई गाय खरीदने की बजाय हम अपनी जो बछड़ी है उसको उच्च पोषण युक्त देकर अच्छी दुधारू बनाए।
0: जी बिल्कुल,
2: तो इसलिए हमें उसका आहार में उसको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। तो हम जिस तरीके से माताओं को लेकर कहते हैं कि उनका जो पहला दूध आता है वो बच्चों को देना जरूरी होता है, उसी तरीके से पशु जो होते हैं उनका भी जो पहला दूध होता है वो उनके बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। हम ये सोच लेते हैं कि इसमें ज्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व हैं और इसका हम बहुत अच्छे से राबड़ी बनाकर खा सकते हैं उसे उबालकर, तो ऐसा हमें नहीं करना है। माँ का जो दूध है गाय का वो सबसे पहले उसके बछड़े को ही हमें देना है ताकि उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व उसे चाहिए वो मिल पाए।
2: बिल्कुल, और ये अपन मानते हैं कि जब बछड़ा 5 दिन तक तो हमने शुरू में दिया ही है उसका पूरा, और उसके बाद में भी जो 100 दिन तक हम ये मान के चलते हैं कि जो लगभग उसको उसमें यूं समझो कि इसको 110 लीटर तक का उसका दूध उसको पिल जाना चाहिए, और अगर 7 से 10 वीक तक का जो सप्ताह का जो बछड़ा होता है उसको 160 लीटर दूध, ये एक मात्रा है कि लगभग इतना तो दूध उसको बच्चे को मिल ही जाना चाहिए। तो
0: जी,
2: इतना जब अपना दूध उसका भी एक ये वजन भी एक जब जो बछड़ा है वो 30 किलो का है तो उसको उसके जो शरीर का वजन है उसके मुकाबले में 10 गुना कम, यानी कि जैसे 30 किलो है तो 3 किलो पर डे प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जबकि अगर वो 60 किलो का उसका वजन हो गया बछड़े का तो एक मोटा अनुमान है तो उसको उसका 20 टाइम से यानी कि उसको 2 किलो, जब ज्यादा वजन हो गया तो उसमें दूध की मात्रा कम होगी, और जब कम वजन है 30 किलो का जब शुरू में जो कम अवस्था पे है तो उसको मतलब इसका 10% उसका दूध मिलना चाहिए, ये एक मोटा मोटा अनुमान है। जब हम क्योंकि हम जब भी अपना बछड़ा होता है बछड़ी होती है तो उसको अपने जो वेटनरी डॉक्टर है उसके देखरेख में तो रखना ही चाहिए, कहीं पर बीमारी से ग्रसित ना हो, उसको अच्छे स्थान पे रखना है, ये सारी चीजें जो हैं। अभी जैसे बरसात के दिन है तो अगर हमारे जो कोड़ कहते हैं या जिसको जो रखने की जगह है अगर उसको गीले जगह पे रखेंगे तो उसको कई सारी बीमारियां होती है। छोटा बच्चे को जिस तरह से हम घर में भी अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं तो बच्चों को ज्यादा हवा ज्यादा बरसात ज्यादा गर्मी इससे हम बचा के रखना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल,
2: ऐसे ही अगर आप जो बछड़ियां हैं तो उसको भी अभी जो बरसात के दिन है तो ऐसा नहीं कि थोड़ी लापरवाही करके उसको बरसात में भीगने के लिए छोड़ दे, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको जो गर्मी है आवश्यक गर्मी है उसको बनाए रखनी पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं ठंड, क्योंकि वो तो हम तो बच्चा तो फिर भी रो के बोल देता है
0: जी जी।
2: लेकिन जो बछड़े बछड़ी है जो गाय के हैं वो बोल नहीं पाते और कई बार हम समझ भी नहीं पाते उन चीजों को, तो उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि अच्छा जो उन्नत पोषण होगा तो उससे उन्नत गाय बनेगी।
0: जी
2: तो ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारा हमारा पोषण का उसको कार्य करना चाहिए। तो अभी इसी तरह से कई चीजें ऐसी हैं कि उसमें जो पौष्टिक तत्व है वो ज्यादा होता है। 10 दिन के बाद में क्या करते हैं कि दूध प्रतिस्थापन होता है, वो जो उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स उसमें ज्यादा होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, तो वो जो गाय के दूध के साथ साथ उसको ये दूध प्रतिस्थापन ये भी देना आवश्यक हो जाता है।
0: जी बिल्कुल,
2: और उसके 3 महीने के बाद में दूध के साथ साथ उसको काफ स्टार्टर एक होता है तो वो भी शुरू कर देना चाहिए। कई बार देखते हैं कि भाई जब बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको सूखा चारा देना शुरू हो जाता है।
0: जी बिल्कुल,
2: लेकिन सूखा चारा क्या होता है कि उसको पचाने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है तो वो पच नहीं पाता, और हम समझते हैं कि उसमें अच्छे से उन्हें तो उसको चारा दे रहे हैं लेकिन उसको दूध का भी मात्रा जरूरी है, और सूखे चारे की जगह ये काफ स्टार्टर है, क्योंकि काफ स्टार्टर के अंदर क्या है कि काफी मात्रा में प्रोटीन होता है और उसके अंदर जो सुपाच्य प्रोटीन जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है
0: जी जी।
2: और इसी तरह से मिनरल, और वो एक अच्छा संपूर्ण आहार है, उसका लगभग 75% तक वो जो बछड़ा है तो वो उसको पाचन कर लेता है। तो उसको केवल सूखे चारे पे नहीं करके उसको हरा चारा दें और उसको काफ स्टार्टर पे भी रखें तो उसमें क्या है बछड़े का वजन है वो तेजी से बढ़ना शुरू होगा, और उसमें जैसे जैसे उसमें वजन भी बढ़ेगा तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये खाली दूध तक शुरू में रखना है, बाद में हम उसको दुग्ध प्रतिस्थापक है वो देना है, उसके बाद में काफ स्टार्टर देना है, और जब थोड़ा सा 90 दिन के बाद में जब बछड़ा बड़ा हो जाए तब हमें धीरे धीरे इसको हरे चारे से लेकर सूखे चारे और फिर जो हमारा जो पशु आहार है नियमित पशु आहार है वो देने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जब अगर हम शुरू में बछड़े को संभाल लेते हैं और अच्छा पोषण देते हैं तो उसमें जो क्योंकि जो उसके गाय के मुकाबले में जो उसकी माँ है उसके मुकाबले में उसके दूध की क्षमता विकसित हो जाती है
0: जी जी।
2: और अगर अच्छा पोषण दिया गया तो उससे भी अच्छे ज्यादा दुग्ध के देने की क्षमता हो जाती है
0: जी।
2: तो इस तरह से अच्छे पोषण से हम बछड़े का विकास करके हम नई गाय खरीदने की जगह हम जो हमारी घर की जो बछड़ी है उसको अच्छे से हम उसको देखभाल करके पोषण से उसको अच्छे दुधारू के रूप में विकसित कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। तो हम हमारे किसान भाई बहनों से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो किसी और गाय को खरीदने की उम्मीद लगा रहे हैं तो उनके घर में भी जो गाय है तो उसी के बछड़े का वो पोषण बहुत अच्छे से करें, साथ ही उसके रहने की जो जगह है वो सुव्यवस्थित करें ताकि वो बीमारियों से दूर रहे, और भरपूर मात्रा में अगर उसे पोषण तत्व मिलेंगे तो उसका जो दूध उत्पादन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा और हमारे किसान भाई बहनों को अन्य गाय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी से अवगत करवाया।
2: धन्यवाद।
1: सेम की जागृति बुन अवड़े अपने वेस में रोकड़िया जी सर जुड़े तक ने एने आपने घनी असल तरीका ते की बता दीदु है कि आपने अगर नवी गाय लेवा जाई रहो ने आपने एम सोची रहो कि एनु उत्पादन आपने वधारे मिलेगा तो आपने घर में जे गाय रहे एनु अगर पोषण वधावी दंगा तो आपने एनन तकी भी उत्पादन असल तरीका तकी मिली सकेगा।
0: होवे अंजलि बुन। तो अंजलि बुन जिम के आज ना कार्यक्रम में आपने बातें तो घना करनी करी ने अवे टेम थी गयो है सूटा पड़वानो तो टेम नु मान राखते थकी पड़ा सूटा पर जाते जाते हमले एक और कितने मोरे पड़ा सूटा
1: होवे।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, समाज बदलने के लिए हमेशा बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक छोटी मदद और एक सम्मान भरा व्यवहार भी बदलाव की शुरुआत बन जाता है। हम अक्सर पूछते हैं कि समाज कब बदलेगा, लेकिन शायद हमें सवाल थोड़ा बदल कर पूछना चाहिए, समाज को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को, जहाँ हम बात करते हैं उन विचारों की जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे परिवार, गांव और पूरे समुदाय को नई दिशा दे सकते हैं। आज का विषय बहुत सरल है, लेकिन इसके भीतर समाज को बदलने की बहुत बड़ी ताकत छुपी है। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत मेरे एक अच्छे व्यवहार से कैसे होती है। बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत मेरे एक अच्छे व्यवहार से कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर समाज की समस्याओं की चर्चा करते हैं, कहीं गंदगी है, कहीं भेदभाव है, तो कहीं लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, कहीं बुजुर्ग अकेले हैं, तो कहीं बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते, कहीं छोटी सी बात पर विवाद बढ़ जाता है। श्रोता साथियों, हम इन सबको देखकर कहते हैं कि समाज को बदलना चाहिए, लेकिन समाज आखिर है क्या? समाज हमसे ही तो बना है, हम हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, इन सभी के व्यवहार से समाज का वातावरण बनता है। इसलिए समाज को बदलने की शुरुआत किसी दूर बैठे व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने व्यवहार से होती है। यही अब बात आती है कि अच्छा समाज आखिरकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अच्छा समाज केवल वह नहीं होता जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हो, सुंदर इमारतें हो या आधुनिक सुविधाएं हो। अच्छा समाज वह होता है जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करें, मुश्किल समय में साथ खड़े हों, कमजोर व्यक्ति को दबाने के बजाय उसका सहारा बने, बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिले, महिलाएं बिना डर अपनी बात रख सके, बुजुर्गों को बोझ नहीं अनुभव का स्रोत समझा जाए और मतभेद होने पर बातचीत से समाधान खोजने की कोशिश की जाए। ऐसा समाज केवल कानून से नहीं बनता, ऐसा समाज हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से बनता है। इसलिए श्रोता साथियों, हमेशा ऐसा व्यवहार करें जिससे हमारा जो समाज है वो सही दिशा में अग्रसर हो। हम कई बार अपने व्यवहार को बहुत छोटी चीज मान लेते हैं, सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, लेकिन एक व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह व्यक्ति तीसरे को प्रभावित करेगा और धीरे धीरे वही व्यवहार समुदाय की संस्कृति बन सकता है। मान लीजिए किसी गांव में एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा कचरा उठाकर सही जगह डाल देता है, दूसरा व्यक्ति उसे देखकर प्रेरित होता है, फिर तीसरा भी ऐसा करता है। कुछ समय बाद लोगों में यह भावना बनने लगती है कि हमारा गांव हमारा घर है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, यकीन मानिए, बदलाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अच्छे समाज की सबसे बड़ी पहचान सम्मान होता है। सम्मान केवल बड़े लोगों को देना नहीं है, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, सफाई कर्मी का, शिक्षक का, बच्चे का, महिला का, बुजुर्ग का, और उस व्यक्ति का भी जिससे हमारे विचार अलग हैं। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके सम्मान की कीमत तय नहीं करती। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पद या पैसे से नहीं, उसके इंसान होने से तय होती है। कई बार हमें लगता है कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी परेशान व्यक्ति से पूछना सब ठीक है, किसी बुजुर्गों का सामान उठाने में मदद करना, किसी बच्चे को रास्ता समझाना, किसी नए व्यक्ति का मुस्कुराकर स्वागत करना, किसी मेहनतकश व्यक्ति की मेहनत की तारीफ करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इंसान केवल भोजन और सुविधाओं से नहीं, सम्मान और अपनापन से भी मजबूत होता है। तो साथियों, आज कार्यक्रम में जैसा कि हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत मेरे एक अच्छे व्यवहार से कैसे होती है, तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: टूटा टूटा एक पर...

आएगा। साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है, बातचीत का तरीका समाज बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, समाज में कई विवाद इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। किसी बात से परेशानी है तो सीधे और सम्मान से बात कीजिए। आवाज ऊंची करने से बात सही नहीं हो जाती, अपमान करने से सामने वाला समझदार नहीं बन जाता और गुस्से में बोले गए शब्द कई बार वर्षों के रिश्ते को चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए अच्छे समाज की शुरुआत इस आदत से भी होती है कि पहले समझूंगा फिर प्रतिक्रिया दूंगा। जी हाँ श्रोता साथियों, हमें बच्चों में भी ये सारी चीजें सिखानी होगी क्योंकि बच्चे हमारी बातें सुनने से ज्यादा हमारा व्यवहार देखते हैं। यदि हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ मत बोलो लेकिन उसके सामने खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चा शब्द नहीं हमारा व्यवहार सीखेगा। यदि हम कहते हैं कि सभी का सम्मान करो लेकिन किसी गरीब व्यक्ति से बुरा व्यवहार करते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। इसलिए बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद अच्छा उदाहरण बनना। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को अच्छे समाज का भाषण देने से पहले उन्हें अच्छा समाज अपने व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज की संवेदनशीलता इस बात में भी दिखाई देती है कि वहाँ महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर महिलाओं की बात सुनी जाती है, उनकी राय को महत्व दिया जाता है, उनकी मेहनत को पहचाना जाता है, उनके साथ सम्मान से बात की जाती है और बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया जाता है तो यही व्यवहार हमारी सोच को बदलता है और वो धीरे धीरे समाज को बदलने में भी मदद करता है। इसी के साथ बुजुर्गों के साथ भी हमारा जो व्यवहार है वो सम्मानजनक होना चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव की ऐसी पूंजी है जिसे किसी किताब से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन बदलती जिंदगी में कई बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। हम उनके साथ कुछ समय बैठ सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनसे पुराने अनुभव पूछ सकते हैं, उनकी जरूरत के छोटे कामों में मदद कर सकते हैं और कभी कभी बुजुर्गों को दवा से पहले अपनापन चाहिए होता है। जी हाँ साथियों, अच्छा समाज हमारे घर के बाहर से शुरू नहीं होता, वह तो हमारे दरवाजे से ही शुरू होता है। पड़ोसी से नमस्कार करने से शुरू होता है, किसी की परेशानी में सहायता करने से शुरू होता है। बच्चों को लेकर छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। त्योहार या खुशी में एक दूसरे को शामिल करें और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें, यही पड़ोस को समुदाय बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों, समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकता। हमारी पसंद अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं है। अच्छा समाज वह है जहां लोग अलग सोच रखते हुए भी एक दूसरे का सम्मान कर सके। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन व्यवहार में सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज हमारा व्यवहार केवल आमने सामने तक सीमित नहीं है, हम सोशल मीडिया पर भी समाज का हिस्सा है। श्रोता साथियों, किसी अफवाह को बिना जांचे आगे न भेजें, किसी की तस्वीर या निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल न करें, किसी को अपमानित करने वाली टिप्पणी करना, ये सब हमारे डिजिटल व्यवहार का हिस्सा है। इसलिए सच्चा नागरिक वही है जो वास्तविक जीवन के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी जिम्मेदार व्यवहार करे। इसलिए कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर कचरा न फैलाएं, पानी को व्यर्थ न बहने दें, जरूरतमंद को रास्ता देना, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, किसी की परेशानी देखकर मजाक न उड़ाना, गलती होने पर माफी मांगना, मदद मिलने पर धन्यवाद कहना, किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में गलत बात न फैलाना, बच्चों और बुजुर्गों से धैर्य पूर्वक बात करना। इनमें किसी काम के लिए बड़े संसाधन नहीं चाहिए, चाहिए केवल जिम्मेदार सोच। जी हाँ श्रोता साथियों, आज जब हम कार्यक्रम में इन सारी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम हमें जरूर करना है। आज हमें किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ करना है जिसे उसकी उम्मीद ना हो। किसी बुजुर्ग से प्यार से बात करनी है, घर में किसी की मेहनत की तारीफ करनी है, किसी जरूरतमंद की छोटी मदद कीजिए, किसी नाराज व्यक्ति से शांति से बात कीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जिसे आप लंबे समय से धन्यवाद नहीं कह पाए हैं। और रात को खुद से पूछिए कि मेरे इस छोटे से व्यवहार से क्या बदला, वो
हो सकता है कि बदलाव बहुत छोटा हो, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होता है। एक छोटी सी कविता श्रोता साथियों आपको सुनाना चाहूंगी कि एक शब्द प्यार का बोलिए, किसी का न मन तोड़िए, जहां मिले कोई थका हुआ तो दो पल उसके साथ बैठिए। जी हाँ, बदलाव की बातें बहुत हुई, अब अपनी बारी आने दो। दुनिया कैसी होनी चाहिए पहले खुद वैसा बन जाने दो। एक दीपक जलाने से रोशनी शुरू होती है, एक कदम बढ़ाने से राह बनती है। समाज बदलने की उम्मीद छोड़िए नहीं, बस शुरुआत अपने व्यवहार से कीजिए। जी हाँ साथियों, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम हर किसी से विनम्र रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन विनम्रता और कमजोरी में बहुत अंतर होता है। अच्छा व्यवहार रखने का मतलब यह नहीं है कि हम गलत बात स्वीकार करें, इसका अर्थ है कि सही बात भी सम्मानजनक तरीके से कहें। हम दृढ़ हो सकते हैं और फिर भी संयम रख सकते हैं, हम अपनी सीमा तय कर सकते हैं और फिर भी सामने वाले का अपमान न करें, यही परिपक्वता है। श्रोता साथियों, अंत में कहना चाहूंगी कि अच्छा समाज किसी एक व्यक्ति के भाषण से नहीं बनता, वह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे मदद करते हैं, कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं और बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं, बच्चों के सामने कैसा उदाहरण रखते हैं, इन सभी चीजों से हमारे समाज का चरित्र बनता है। इसलिए समाज को बदलने के लिए हाथ में कोई बड़ा पद होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ही पहली शक्ति है। तो आशा करती हूँ श्रोता साथियों कि आज के कार्यक्रम की बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का